0: आपकी छोटी बहन की ट्यूशन टीचर आती है, सडनली यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस क्योंकि यू आर होपिंग टू हुक अप विद हर. ऐसे जो भी आपके डर्टी कन्फेशंस हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफबी एंड वी विल गेट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर
1: द सीक्रेट बॉक्स.
0: और आज मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर हु हैज अ वेरी एक्साइटिंग कन्फेशन टू टेल मी. हाय मिस्ट्री कॉलर.
2: हाय,
0: कैसे हो आप?
2: बहुत अच्छे, आप कैसे हो?
0: झूठ मत बोलो कि आप अच्छे हो, मुझे झूठ सुनाई दे रहा है इधर. आपके साथ जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था. मतलब आपने मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था, और बाकी की कंप्लीट स्टोरी स्टार्ट टू फिनिश आप मुझे अब बता दो.
2: हुआ ये कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम आ रहे थे कॉन्सर्ट से वापस. हम पहले भी काफी मिल चुके हैं, पर यार इतना सीधा कोई कैसे हो सकता है? मतलब आज के जमाने में लड़का इतना सीधा यहाँ से लड़की अप्रोच कर रही है और नो नथिंग, कुछ एक्शन ही नहीं है.
0: बट ही इज इंटरेस्टेड इन यू, या फिर वो आपको फ्रेंड जोन कर रहा है?
2: नहीं यार, मतलब ठीक है, रोज आई लव यू, ये वो ड्रॉप करना, पिक करना, टाइम पे लेना, सब कुछ, डिनर, डेट, एवरीथिंग इज देयर. बट इतना प्यार नहीं चाहिए यार, थोड़ा लस्ट भी चाहिए होता है जिंदगी में.
0: आई अग्री विद यू, डू कैरी ऑन. तो फिर क्या हुआ?
2: तो बस फिर उस लस्ट के चक्कर में मैंने सोचा हम एक कॉन्सर्ट पे गए, वी गॉट अ लिटिल ड्रंक एंड आई वाज रियली ड्रंक, ठीक है. और तो मैंने पहले से ही ना सारी अरेंजमेंट कर दी थी. फिर उसके बाद फिर मैं उसने मुझे घर ड्रॉप किया एंड देन एवरीथिंग वाज रेडी. ओके एंड वी वर टॉकिंग ऑन टेक्स्ट. सडनली व्हाट आई थॉट कि चलो लेट्स यू नो लेट्स आई थॉट ऑफ सेंडिंग अ पिक्चर टू हिम.
0: एक सेकंड, तो बेसिकली यू वर रेडी टू गेट इन बेड एंड गेट नॉटी, लेकिन उसने आपको ड्रॉप कर दिया और वो कट लिया वहां से?
2: हाँ वो कट लिया. फिर भी मैंने सोचा कि इमीडिएटली कि जैसे मैं घर पहुंचू एंड देन आई कैन सेंड अ नाइस यू नो स्टीमी हॉट पिक्चर टू हिम.
0: हां राइट, ऑफ कोर्स दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दैट पॉइंट इन टाइम.
2: एंड मतलब नॉर्मल लड़का क्या करेगा रोशी,
0: तो फिर
2: एंड फिर कुछ नहीं. एंड आई वाज वेटिंग वेटिंग वेटिंग कि अब रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आएगा. एंड आई लाइक एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि भाई मैं कॉल करूं तो करूं कैसे, फोटो भेजने के बाद अब मैं कॉल भी कुछ
0: एग्जैक्टली.
2: हां सो आई वाज वेटिंग एंड उसके बाद उस चक्कर में एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप. यू नो यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड. आई वोक अप विद व्हाट, मेरा दरवाजा इतनी जोर से बैंग हो रहा था, यू वोंट बिलीव. वो जो पिक्चर थी वो मैंने अपने फैमिली ग्रुप, नॉट इवन माई इमीडिएट फैमिली बट खानदान वाले फैमिली ग्रुप पे चली गई. घर पे महायुद्ध, महाभारत, कौन सा वर्ल्ड वॉर 10 फट चुका था.
0: डूड, आप रात को कितने थके हुए थे और हाउ ड्रंक वर यू दैट आपने उसे फैमिली ग्रुप पे भेज दिया? इट माइट जस्ट हेल्प यू, हियर्स अ लिटिल रोशिफिकेशन.
3: यू हैव बीन रोशिफाइड.
0: आई होप दैट मेक्स यू फील बेटर माय डार्लिंग.
2: Yes, it does. Thank you, Roshi.
0: Thank you, my love, for sharing your confession with me. और अगर आपकी भी जिंदगी में है ऐसी ही कोई confession, feel free to hit me up. मेरी जान on Insta या FB, but whatever you do, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

पता है वो इतना पुगी है ना कि मैं उससे जितनी भी बातें कर लूँ, 4 घंटे 5 घंटे ऑफिस के लोगों के बारे में, एंड ऑफिस के लोग काफी अनोइंग है, बट वो हमेशा सुनता है. व्हाट अ पुकी ग्रीन फ्लैग दिस गाय इज. ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये मेरी नई प्रोड्यूसर का BF इज लाइक वेरी क्यूट एंड ऑल. वो उसके बारे में तारीफ करी थी, तो आई सेड कि उसके बारे में कुछ बुरा नहीं है. कहती हाँ उसका टेम्पर थोड़ा सा खराब है, बट वो ज़्यादा गुस्सा होता नहीं है, और जब वो गुस्सा करते तो मैं गाना गाने लग जाती हूँ. आई वाज लाइक दैट्स अ नाइस वे ऑफ डीलिंग विद समवन हु इज हैविंग अ टेम्परमेंटल फ्लेयर अप. अगर आपकी भी जिंदगी में मेरी प्रोड्यूसर गुरुषा की तरह एक ऐसा ही ग्रीन फ्लैग पुकी है, दैट्स सच अ रेरिटी, और उसके बारे में जानने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मुझ जैसे सिंगल इंसान पर थोड़ी तरस करें, दया खाएं, तरस करें. इट डजेंट मैटर, जो भी खाना खा के मुझे मैसेज कर देना. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है RoCHIE. सो व्हाइल यू हिट मी अप ऑन योर सोशल मीडिया डार्लिंग, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Richie Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: यार honest to goodness this is not cool and I was telling Gurusha my producer this and उसको मेरे लिए पता नहीं कितनी sympathy हो रही है उसकी शक्ल देख के तो लग नहीं रहा like she cares a lot. Okay, so the news is that Tara Sutaria is dating Aditya Roy Kapoor. अगर इन्हें fraternity में ही shipping खेलनी है तो हम सब गरीबों का क्या होगा. Aditya Roy Kapoor was someone I called the dibs on but this is clearly not working out. और श्रद्धा कपूर के साथ उसका इतना एंडलेस प्यार था, उसके प्यार में उसने अपनी दाढ़ी उगा ली थी, अपनी आंखें ऐसे डोर टाइप कर ली थी, अब सडनली वो सब चला गया है फॉर तारा सुतारिया जस्ट बिकॉज उसे पियानो बजाना आता है और गाना गाना आता है. यार आई हेट दिस. मेरी मम्मी पापा ने तो मुझे कभी कुछ नहीं सिखाया. सी वर्ड बनना वो हम खुद ही सीखे हैं यार. हमारे मम्मी पापा का इसमें कोई योगदान नहीं था. तो हम जिंदगी भर सिंगल रहेंगे. आदित्य रॉय कपूर विल एंड अप स्लीपिंग विद everybody in the industry. ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. स्लीपिंग विद आई मीन कि कैंपिंग जाओगे तो एक ही टेंट होता है ना. यू नो व्हाट आई मीन. ऑन दैट नोट, अगर आपके पास कोई बॉलीवुड शिपिंग गॉसिप है, क्योंकि गुरुशा इज गोना कीप टेलिंग मी बट आई वांट यू टू टेल मी एज वेल, देन हिट मी अप ऑन माय सोशल्स. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. एन आदित्य, आई विल नेवर फॉरगेट दिस. ओके, ऑन दैट नोट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La virba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Sumanji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35 / 14A फर्स्ट फ्लोर नगर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनशाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनशाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनशाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: क्या हूँ
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: वैसे तो लाइफ में ना इतनी गर्मी हो रही है, कुछ करने का मन नहीं करता. लेकिन टू मेक आर गर्मी वाली लाइफ मोर इंटरेस्टिंग, आई हैव विद मी द ऑथर ऑफ द बुक मदिरा, पराग शास्त्री, जिन्होंने अक्रॉस इंडिया जो भी लोकली अवेलेबल चीज़ें होती हैं, स्पाइसेस, फ्लावर्स एक्सेट्रा, उससे जो लोकली प्रोड्यूस्ड इंटरेस्टिंग ड्रिंक्स बनते हैं ना, उसके बारे में बात की है. एंड ऑन द मिर्ची हॉटलाइन विद मी राइट नाउ इज पराग शास्त्री. वूहू, हेलो.
3: हाय रोशि,
2: हाउ आर यू?
3: Very good. Good talking to you.
2: Good talking to you too, Parag. In fact, it's going to get better. क्योंकि मेरा आपसे सवाल ये है, इतनी गर्मी हो रही है लेकिन डेटिंग लाइफ लोगों की रुकती नहीं है इतनी गर्मी में. और इन अ सर्कमस्टेंस लाइक दैट, अगर एक इंसान को अपने घर में ही कुछ इंटरेस्टिंग ड्रिंक बनानी हो टू मेक दैट डेटिंग लाइफ वे कूलर, वे मोर एडवेंचरस, तो ऐसी क्या चीज है जो जल्दी से घर पे बन जाती है और पार्टनर बहुत इंप्रेस हो जाएगा या फर्स्ट डेट बहुत इंप्रेस हो जाएगी?
3: Okay, very interesting question if you ask me, frankly.
2: Thank you.
3: Right. Honestly, kya karte hai na, people sometimes overcomplicate a situation like this and a drink like this. If someone is coming over for the first time and agar aapko, agar aapko, right, impress karna hai, come effort mein, right? So I think I have a very perfect drink which comes to my mind right now, right? Let's talk about Kokum cooler, right? Because that's really very, very, you know, refreshing. Just need basic Kokum, right? You need chilled soda, right? And a pinch of black salt and a few leaves of mint. That's what you need, right? So the idea is just shake all of them, right? Say, for example, take Kokum or Kokum syrup, whatever you have, right? Chilled soda. Add a pinch of black salt to it.
2: ठीक है.
3: Shake it well. Pour it in a glass. And a mint leaf on top.
2: Wow.
3: I think that's gonna do magic.
2: So इतना simple.
3: We are all going through right now. And the idea is, you know, half the battle is presentation, right?
2: हाँ.
3: Right. So how you pick up a glassware of your choice, that's more important for to impress people. And I think Indian kitchens, right, are anyway full of amazing flavors, so you don't need to bother about it anyway.
2: अरे ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है. बस सोडा, थोड़ा सा कोकम का सिरप, थोड़ा सा उसमें काला नमक, उसको स्टर कर दो और ऊपर से थोड़ा सा पुदीना डाल दो. दैट इज इट. इट इज लाइक दिस अमेजिंग. यू आर सच अ ड्रीम बोर्ड पराग. मेरा बस चलता तो मैं आपसे अगले पूरे महीने सवाल पूछती रहती. बट थैंक यू सो मच फॉर बींग ऑन द शो विद मी. And all of you people out there, जो पराग के इस किताब के बारे में intrigued हैं, you can find the book online everywhere, in bookstores near you. और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो about my drink of choice, hit me up on Insta या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की spelling है ROCHIE. So go ahead, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जस्ट इन अ लाइफ अपडेट, कल मैंने घर पर गुलाब जामुन बनाने की कोशिश की थी और मेरे जो गुलाब जामुन के जामुन थे दे एंडेड अप बिकमिंग सो हार्ड कि इतने हार्ड तो मेरे रिलेशनशिप्स भी नहीं थे. एंड देन अल्टीमेटली आई डिडंट नो व्हाट टू डू विद देम, सो आई हैव डिसाइडेड कि मैं अपने बैग से पेपर स्प्रे निकाल कर ये जो गुलाब जामुन के जामुन थे इन्हें अपने बैग में डाल रही हूँ. एनी टाइम समवन हरासेस मी, मैं बस ये एक जामुन उठाऊंगी, बंदे के मुंह पे मारूंगी, हो सकता है वो जिंदगी भर के लिए अनकॉन्शियस हो जाए. और अगर आपकी भी जिंदगी में आपने ऐसे ही अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड को प्लीज करने के लिए कुछ खाना बनाने की कोशिश की और उसका एंड रिजल्ट ये था कि आपकी सेल्फ एस्टीम टुक अ रियली बिग हिट, आई थिंक हमें नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए. एंड टू डू दैट आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम छे मिर्ची रोशी, काम छे आपसे प्यार करना. So hit me up darling, do what you need to do, लेकिन कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आज का वर्ड ऑफ द डे है डिलुलू, जो आप थे जब आप प्यार में थे। डिलुलू का लॉन्गर वर्जन एंड एक्चुअल इंग्लिश वर्ड है डिल्यूजनल, अर्थात वो इंसान जो प्यार में अंधा होकर पागल हो जाता है। आई मीन दैट्स नॉट द एग्जैक्ट वर्ड बट यू नो व्हाट आई मीन। क्योंकि जब आप प्यार में थे तब इतने अंधे थे कि सामने वाला आपके सामने तीन और लड़कियों को डेट कर रहा था, लेकिन आपके प्यार के अंधेपन में आपको लग रहा था वो तीनों उसकी बहनों जैसे हैं। मुंह बोली बहन हुआ तो क्या, आगे मजे ले लिए पंगे। आई एम सेइंग दिस लेस अबाउट यू एंड मोर अबाउट माई एक्स, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि मैं इकलौता इंसान थोड़ी हूँ इस जिंदगी में जिसके साथ ऐसा बुरा बर्ताव हुआ है। आपके साथ इससे वर्स हुआ है ये मुझे पता है, पर अब आपको क्या करना है, मुझे टेक्स्ट करना है सो दैट हम नोट्स कंपेयर करेंगे एंड देन वी रियलाइज दैट बोथ ऑफ अस हैव हैड इट इक्वली बैड। मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। आप मुझे ढूंढोगे इंस्टा या FB पर एंड देन वील डू प्यार का पंछी बोले कुकू कुकू, एंड व्हाइल यू डू ऑल ऑफ दैट कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabala. Burga, burga. La vizba la burga. Milci, burga.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
1: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: अच्छा अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
2: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा है तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: अरे यार ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।

0: Mirchi. R-O-C-H-I-E. Roshi, Roshi. Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: आप वैसे तो इंटरेस्टेड नहीं हो पढ़ाई में, लेकिन जब आपकी छोटी बहन की ट्यूशन टीचर आती है, सडनली यू आर वेरी इंटरेस्टेड इन साइंस क्योंकि यू आर होपिंग टू हुक अप विद हर. ऐसे जो भी आपके डर्टी कन्फेशंस हैं, व्हाई डोंट यू हिट मी अप ऑन इंस्टा या एफबी एंड वी विल गेट टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि टाइम हो गया है फॉर
3: द सीक्रेट बॉक्स.
2: और आज मेरे साथ है मेरी मिस्ट्री कॉलर हु हैज अ वेरी एक्साइटिंग कन्फेशन टू टेल मी. हाय मिस्ट्री कॉलर.
4: हाय,
2: कैसे हो आप?
4: बहुत अच्छे, आप कैसे हो?
2: झूठ मत बोलो कि आप अच्छे हो, मुझे झूठ सुनाई दे रहा है. इधर आपके साथ जो हुआ है वो होना नहीं चाहिए था. मतलब आपने मुझे इंस्टाग्राम पे थोड़ा बहुत तो बता ही दिया था, और बाकी की कंप्लीट स्टोरी स्टार्ट टू फिनिश आप मुझे अब बता दो.
4: हुआ ये कि मैं और मेरा बॉयफ्रेंड हम आ रहे थे कॉन्सर्ट से वापस. हम पहले भी काफी मिल चुके हैं, पर यार इतना सीधा कोई कैसे हो सकता है? मतलब आज के जमाने में लड़का इतना सीधा यहाँ से लड़की अप्रोच कर रही है और नो नथिंग, कुछ एक्शन ही नहीं है.
2: बट ही इज इंटरेस्टेड इन यू, या फिर वो आपको फ्रेंड जोन कर रहा है?
4: नहीं यार, मतलब ठीक है, रोज आई लव यू, ये वो ड्रॉप करना, पिक करना, टाइम पे लेना, सब कुछ, डिनर, डेट, एवरीथिंग इज देयर. बट इतना प्यार नहीं चाहिए यार, थोड़ा लस्ट भी चाहिए होता है जिंदगी में.
2: I agree with you. Do carry on. तो फिर क्या हुआ?
4: तो बस फिर उस लस्ट के चक्कर में मैंने सोचा हम एक कॉन्सर्ट पे गए, we got a little drunk and I was really drunk, ठीक है? और तो मैंने पहले से ही ना सारी अरेंजमेंट कर दी थी. फिर उसके बाद फिर मैं उसने मुझे घर ड्रॉप किया एंड देन एवरीथिंग वाज रेडी. ओके, एंड वी वर टॉकिंग ऑन टेक्स्ट. सडनली व्हाट आई थॉट कि चलो लेट्स, यू नो, लेट्स, आई थॉट ऑफ सेंडिंग अ पिक्चर टू हिम.
2: एक सेकंड, तो बेसिकली यू वर रेडी टू गेट इन बेड एंड गेट नॉटी, लेकिन उसने आपको ड्रॉप कर दिया और वो कट लिया वहां से.
4: हाँ, वो कट लिया. फिर भी मैंने सोचा कि इमीडिएटली कि जैसे मैं घर पहुंचू एंड देन आई कैन सेंड अ नाइस, यू नो, स्टीली हॉट पिक्चर टू हिम.
2: हां, राइट, ऑफ कोर्स, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू एट दैट पॉइंट इन टाइम.
4: एंड मतलब नॉर्मल लड़का क्या करेगा रोशी,
2: तो फिर
4: एंड फिर कुछ नहीं. एंड आई वाज वेटिंग वेटिंग वेटिंग कि अब रिप्लाई आएगा, अब रिप्लाई आएगा. एंड आई लाइक, एंड आई वाज थिंकिंग कि भाई मैं कॉल करूं तो करूं कैसे, फोटो भेजने के बाद अपना कॉल भी कुछ.
2: एग्जैक्टली,
4: हां, सो आई वेटिंग. एंड उसके बाद उस चक्कर में एंड आई वेंट ऑफ टू स्लीप. यू वोंट बिलीव व्हाट हैपेंड. आई वोक अप विद व्हाट, मेरा दरवाजा इतनी जोर से बैंग हो रहा था. यू वोंट बिलीव, वो जो पिक्चर थी वो मैंने अपने फैमिली ग्रुप, नॉट इवन माई इमीडिएट फैमिली, बट खानदान वाले फैमिली ग्रुप पे चली गई. घर पे महायुद्ध, महाभारत, नहीं पता नहीं कौन सा वर्ल्ड वॉर 10 फट चुका था.
2: Dude, आप रात को कितने थके हुए थे और how drunk were you that आपने उसे फैमिली ग्रुप में भेज दिया? It might just help you, here's a little roshification.
0: You've been roshified.
2: I hope that makes you feel better, my darling.
4: Yes, it does. Thank you, Roshi.
2: Thank you, my love, for sharing your confession with me. और अगर आपकी भी जिंदगी में है ऐसी ही कोई confession, feel free to hit me up. मेरी जान on Insta या FB, but whatever you do, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

only on Radio Mercy New York. It's hot.

0: Mirchi.
1: R-O-C-H-I-E.
2: Roshi, Roshi.
0: Mirchi, Roshi.
3: Only on Radio Mirchi, New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: Wait, OMG, I forgot to tell you a story. It's a very interesting story. और उसके बाद promptly आप सो जाओ। अगर आप नए-नए एक crushing relationship में हो और आप दोनों आजकल रात को एक दूसरे को text कर रहे हो, then this is a perfect text to send। अगर आप चाहते हो कि सुबह उठते तक आपके पास कम से कम 15 texts हो कि यार वो क्या story थी, तू बताने वाली थी और उसके बाद तू सो गई। How could you do that to me? This is one good night text that will guarantee कि वो बंदा या बंदी आपके बारे में सारी रात सोचेंगे। ये मैंने खुद ट्राई करके देखा है एंड इट हैज़ वर्क्ड एवरी सिंगल टाइम सक्सेसफुली। इसे ट्राई करके देखो। आई एम सो श्योर दैट यू विल फॉल इन लव विद मी इवन मोर कि यार क्या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। एंड टू थैंक मी पर्सनली यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर। मेरा नाम है मिर्ची रोशी। काम है आपसे प्यार करना। नाम की स्पेलिंग है ROCHIE। सो ढूंढो ना मुझे। एंड वन थिंग दैट आई मस्ट से टू यू, जिसके पास लव है उसके पास सब है। एंड आई लव यू लोथ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट मिर्ची
1: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
2: हेलो हेलो
3: सर वेरी गुड इवनिंग थैंक्स फॉर
2: हाँ बोलिए
3: सर आई एम सो सॉरी सर बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
2: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात है
3: सर आई एम सो सॉरी पूरा बताइए
2: क्या कह रहे हो भैया कहाँ क्या हो गया
3: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
2: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
3: आई एम सो सॉरी सर ऐसे कभी कभी हो जाता है सर सर उससे कुछ परचेज किया आपने
2: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
3: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
2: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या
3: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
2: मैं पागल पागल है क्या
3: पागल होने छूट गया है क्या अब तो देने पड़ेंगे सर
2: हेलो
3: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे
2: कौन बोल रहा है विपिन
3: नहीं सर तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे
2: पागल के दिमाग खराब है क्या पैसे देने पड़ेंगे
3: अब तो फंस गए सर
2: हेलो
4: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया
2: उसका पैसों को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
4: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
2: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं हाँ जी
4: अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: अरे यू के बड़ा गोरी भाई बजा।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची। इट्स हॉट।

0: कमल हसन साहब, इनके बारे में बात करने के लिए मेरे पास लफ्ज ही नहीं है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। मतलब मेरे पास जो लफ्ज हैं वो इनकी शख्सियत, इनकी अचीवमेंट्स के साथ जस्टिस कर ही नहीं सकते हैं। ये आर्टिस्ट नहीं है, ये कुदरत का करिश्मा है। ये कुदरत का करिश्मा जब 5-6 साल का था तभी से फिल्मों में काम कर रहा है। इनफैक्ट इनकी पहली फिल्म के लिए इनको बेस्ट चाइल्ड एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला था। फिर बड़े होकर किस उम्र में इन्होंने फिल्मों में फुल टाइम काम करना शुरू किया, किस तरह रोल्स से इनकी शुरुआत हुई, साउथ में कौन सी लैंग्वेज की फिल्म्स में इनको ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, सुनिए एक बार एक इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: 19 was when I got acting breaks again. I played small roles, villains, comedians, and then comedy. And then from comedy, it became the loser who always let his jaw drop. And the girl said, "Oh, you're like a brother to me." That happened for some time, and then suddenly they thought it was a good combi. Suddenly, I realized Kerala made me a lead role player. By the time I was getting my foot into the Tamil industry, I became a star in Kerala. I think it was 1975-76.
0: तो मतलब जब हिंदी सिनेमा में इनका डेब्यू हुआ 1981 में एक दूजे के लिए फिल्म से, तब तक वो साउथ में ऑलरेडी सुपरस्टार थे, तो एक दूजे के लिए बॉलीवुड में उनकी फर्स्ट फिल्म होगी। बट ओवरऑल उनकी ये 101st फिल्म थी, एक दूजे के लिए का वासु, वन ऑफ द मोस्ट अडोरेबल कैरेक्टर्स प्लेड बाय दिस फिनोमिनल एक्टर। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे

0: भूल गए
1: जाने मेरा नाम
0: अच्छा
1: चोरी मेरा काम जाने मेरा नाम और चोरी मेरा काम राम और श्याम
0: बंडल बाज
1: लड़के मिलन गीत गाता चल
0: बेशरम
1: प्यार का मौसम
0: बेशरम

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर? हाँ कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। हाँ कुकर में जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सिटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क? कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
4: नहीं कोई मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा तू?
3: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है, घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pirani Jeans with Charu, only on

0: सिनेमा का इंसाइक्लोपीडिया। अब ऐसा नाम अगर किसी को मिला हो उनके बारे में मैं करूं बात, मेरी क्या औकात। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूं चारू आपके साथ, कमल हसन साहब। आपको पता है हिंदी फिल्मों में उनकी पहली फिल्म और अदरवाइज उनकी 101st फिल्म एक दूजे के लिए जब सुपर डुपर हिट हो गई थी, उनको बहुत सारी फिल्में ऑफर हुई थी, लेकिन ज्यादातर उन्होंने रिजेक्ट कर दी या वो नहीं कर पाए। एक बार मनमोहन देसाई साहब भी उनके पास गए थे एक फिल्म लेकर। सुनिए इस इंसिडेंट के बारे में, एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मनमोहन देसाई साहब वाज वेरी अपसेट व्हेन आई इंसिस्टेड ऑन सीइंग अ स्क्रिप्ट। आई थिंक इट वाज फॉर अ फिल्म कॉल्ड अल्लाह रखा। आई कुड ओनली अपोलोजाइज बिकॉज़ आई डिडंट मीन एनी डिसरेस्पेक्ट, बट देन ही सेड इवन मिस्टर अमिताभ डजंट आस्क फॉर अ स्क्रिप्ट। माय आंसर वाज दैट प्रोबब्ली इट साउंडेड कॉकी टू हिम, ही सेड ही कैन अफोर्ड नॉट टू आस्क फॉर इट। And I was so excited with him coming that I didn't even offer them tea. So first, this guy doesn't offer me tea, then he asks for script. So there's so many things which went against me. I must have missed many opportunities.
0: In Hindi films, Kamal Hassan sahab ne chahe limited kaam kiya ho, lekin unke kaam ki ek alag hi league hai. Aap sirf 80s ki filmein utha lijiye, Ek Dooje Ke Liye, Sagar, Sadma and Sanam Teri Kasam. Sanam Teri Kasam mein ek ek scene mein kya brilliant hai ye banda. In fact, ek wedding scene mein jo unka dance hai na, mujhe lagta hai wo dance hi pura ka pura paisa vasool hai. Purani Jeans par main hoon Charu aapke saath. Aap sun rahe hain Mirchi.

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

सारी दुनिया के फिल्मों के सैड क्लाइमेक्स सीन्स एक तरफ और सदमा का सैड क्लाइमेक्स सीन एक तरफा। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, और उस एक्टर के आगे मैं सर झुकाऊं, धोक दूं, व्हाट अ ब्रिलियंट एक्टर कमल हसन साहब। पर आपको पता है, इसी सैड एंडिंग की वजह से सदमा फिल्म फ्लॉप हो गई थी। एक और वजह ये भी थी कि उस टाइम कमल हसन साहब ने जो

0: द फिनोमेना कॉल्ड कमल हसन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई 80s में जब हिंदी फिल्मों में उनका डेब्यू हुआ, साउथ में तो वो ऑलरेडी सुपरस्टार थे और हिंदी फिल्मों में भी फिर सेंसेशन बन गए। तो सागर फिल्म वाज सपोज्ड टू बी डिंपल कपाड़िया कमबैक फिल्म, ऋषि कपूर डिंपल कपाड़िया की जोड़ी, लेकिन सारी तारीफें ले गए कमल हसन साहब। अपने इस रोल के बारे में सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: आई थॉट इट वाज अ ग्रेट रोल सिंस आई वाज विलिंग टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द सेट एंड दो आई वाज बिजी When I'm there, I didn't have any other work. So I was there on the set improvising. Even when Chintu was there, I used to rehearse while some other scene was going on. I was enjoying myself.
0: लेकिन 80s में ये चंद फिल्में करने के बाद वो हिंदी फिल्मों से थोड़े दूर क्यों हो गए?
1: The only reason is that I have this addiction to completing projects and going on to the next. But by the time you finish a project in Hindi, it's 1.5 years. You lose touch. The clothes you're wearing has gone out of fashion. You reshoot. You've gone fatter, slimmer, or sicker, wiser, whatever. So many things happen in the meanwhile. So you miss out on the point. So it's tedious and frightening.
0: मतलब बॉलीवुड की लेट लतीफी और ढीलापन कमल हसन साहब को सूट नहीं करी, बट थैंक्स टू एडवांसमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी उनकी कोई भी फिल्म आज हम डब्ड वर्जन में या सबटाइटल्स के साथ देख सकते हैं। हैट्स ऑफ टू दिस ट्रेजर ऑफ इंडियन सिनेमा। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: ऐसा मैंने सुना है कि फिरोज खान साहब इतने शरारती थे, पता है कितने शरारती थे, मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इतने शरारती थे, पढ़ाई लिखाई में तो उनका मन लगता नहीं था, तो हर स्कूल से उनको ऐसे टाटा बाय बाय नमस्ते कर दिया जाता था कि आप प्लीज स्कूल बदल लें। सुनिए इस बारे में एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: चूंकि मैं इतना ज़हीन था और हमेशा क्लास में एक दो तीन रहता था, तो ये बहुत ही पोलाइटली कहते थे कि आप दूसरे स्कूल में चले जाएं, हम आपको एक्सपेल नहीं करना चाहते हैं, और आप अच्छा है कि आप दूसरे स्कूल में दाखिल हो जाएं। तो ऐसे मैंने 3 स्कूल बदली किए हैं मेरी कम उम्र में।
0: आ हा हा हा, क्या लफ्ज़ यूज़ किया है, क्या राइमिंग यूज़ की है, ज़हीन, 1, 2, 3। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @RJ.Charu, RJ.CH।

0: Milci.
1: Escabana, puscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vedova la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: हेलो, क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है, सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें, सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसिल है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल
3: सुमन जी आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है, आप अगर मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया, रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, अब आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे, आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: हार्ट ब्रेक के गाने को भी डांस वाला गाना बना दे वो मैजिशियन है आरडी बर्मन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये वाला गाना इज वन ऑफ दोज सॉन्ग्स जिनको सुन के मैं आरडी बर्मन की सिंगिंग कंपोजिंग सबकी फैन हो गई थी। वैसे एज अ सिंगर वो अपने आप को कोई ऑसम नहीं मानते थे। सुनिए एक बार अपनी सिंगिंग के बारे में और अमिताभ बच्चन जी के लिए गाने के बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर लाइक सच। मेरे बचपन में एक टॉन्सिल ऑपरेशन हो चुका है, उसके बाद मेरा गले का मतलब हल्का पतला सा वॉइस हो गया था। कि जब भी मैं गाता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा अलग टाइप के वॉइस में गाऊं। एक सौभाग्य और दुर्भाग्य की बात भी मैं कहना चाहूंगा कि मेरे वॉइस सुन के अमिताभ साहब बहुत खुश हो गए थे। अमिताभ साहब ने कहा कि भैया पंचम ये मेरे लिए तो तुमको गाना ही पड़ेगा। मैं बोला कि यार फिर से फंसने वाली बात है, एक तो तुम्हारे लिए गाना गाऊं और ऐसा वैसा करके गाना, मैंने नहीं तुम्हारा नॉर्मल वॉइस में गाना गाऊं। तो मैंने एक दो पिक्चर की है उनके साथ, वो दो पिक्चर चली नहीं। एक पिक्चर का नाम है महान और एक पिक्चर किया था पुकार। उस दोनों पिक्चर में मैंने प्लेबैक दिया था उनके लिए, लोगों ने बहुत तारीफ की
0: है। ही तारीफ के काबिल भाई। इस गाने का ना एक अलग ही रंग रूप है, एक अलग ही वाइब और फील है इसकी जिसको कोई मैच नहीं कर सकता। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।
2: Hey,

0: दिल में
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: नूरी फिल्म का गाना। बहुत से लोगों को लगता है कि नूरी फिल्म पूनम ढिल्लों की पहली फिल्म थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। यस, एज लीड मेन एक्ट्रेस पहली फिल्म थी 1979 की, लेकिन एक्चुअली उनकी पहली फिल्म 1978 की त्रिशूल थी। और इस फिल्म में जब यश चोपड़ा साहब ने उनको स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनने को बोला तो क्या था उनका रिएक्शन, सुनिए एक इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: नेक्स्ट थिंग वाज यश जी सर हम वो ओबरा होटल के स्विमिंग पूल में करने वाले हैं एंड सम बिकिनी दे बॉट फॉर मी। आई सेड आई एम नॉट गोइंग टू वेयर दैट। सो आई सेड बिकॉज़ आई हैव बीन स्विमिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड, आई हैव बीन अ स्विमर अप टू स्टेट लेवल, नेशनल लेवल फ्रॉम व्हेन आई वाज अ किड। फॉर मी स्विमिंग कॉस्ट्यूम वाज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर, इट्सी बिट्सी वाजंट कंफर्टेबल। सो आई सेड आई विल वेयर अ स्विमिंग कॉस्ट्यूम, आई एम कंफर्टेबल विद शॉर्ट्स बिकॉज़ I used to do gymnastics in school and I was a sports person, but to suddenly wear this little thingy. So finally after much back and forth they got me, I remember, one full piece, one green color one, and then some shorts wali shorts and then something.
0: Well, ye gana tha gapuchi gapuchi gum gum, nursery rhyme sound karta hai. Sun lete hain purani jeans par, main hu charu aapke saath, aap sun rahe hain mirchi.

1978 की फिल्म डॉन की शूटिंग जब शुरू हुई तो शुरुआत हुई थी ये मेरा दिल यार का दीवाना इस गाने की शूट से। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और शुरुआत में ही डायरेक्टर चंद्र बरोट और कोरियोग्राफर पीएल राज के बीच में एक छोटा सा झगड़ा, एक डिसएग्रीमेंट हो गया। डायरेक्टर चाहते थे कि इस गाने की वीडियो में हेलन जी अल्कोहल की एक बॉटल पकड़े, जबकि कोरियोग्राफर इसके खिलाफ थे। तो डिसाइड ये हुआ कि इस गाने के दो वर्जन शूट हुए, एक जिसमें उनके हाथ में बॉटल थी, एक जिसमें नहीं थी। ये दोनों वर्जन बाद में देखे गए और कोरियोग्राफर फाइनली अग्रीड टू डायरेक्टर्स विजन एंड वर्जन। तो अब अगर हम ये गाना देखते हैं, उसमें हेलन जी के हाथ में अल्कोहल की बॉटल है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और हम समा बांधते हैं यहाँ पर थोड़े और म्यूजिक के साथ ऑन मिर्च।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

पता नहीं आपको याद है कि नहीं याद है, 80s 90s में एक टेलीविजन एड आती थी अंडों के ऊपर, मेरे जान मुर्गी के अंडे, ना ना ना ना ना। संडे हो या मंडे, रोज खाएं अंडे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। तो इस एड की जो जिंगल की जो ट्यून थी ना, वो एक बहुत पुराने गाने से ली गई थी। इसे कंपोज किया था सी रामचंद्र ने, लिखा था पीएल संतोषी ने, जो डायरेक्टर राजकुमार संतोषी के फादर थे, गाया था खुद कंपोजर सी रामचंद्र ने, साथ में गीता दत्त, शमशाद बेगम, मीना कपूर की आवाज। ये वाला गाना सॉरी फॉर द पुअर ऑडियो क्वालिटी, लेकिन ये 1947 की फिल्म शहनाई का गाना है, और उस टाइम ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था क्योंकि अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत थी लोगों के दिलों में, और इस गाने में ब्रिटिश कल्चर का सॉर्ट ऑफ मजाक उड़ाया गया है। इसलिए क्या क्या अतरंगी नगीने छुपे हैं पुराने गानों में भाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: हो रहना किसी के,
1: क्या करना है जीते,
0: अरे हो रहना किसी के,
1: हम रहे तो याद करोगे समझे
0: समझे।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga.
1: Mirchi, burga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. आई एम सो सॉरी सर, बट सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं, क्या बात है
2: सर, आई एम सो सॉरी, पूरा बताइए
1: क्या कह रहे हो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं, मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: I'm so sorry सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, सोचा तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पगला.
4: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

0: मुगले आजम फिल्म और मुगले आजम में पृथ्वीराज कपूर का अकबर वाला रोल। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इसके बारे में एक बार एक पुराने इंटरव्यू में लेट असरानी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: पृथ्वीराज कपूर मुगले आजम में सबको मालूम, अकबर का रोल कर रहे थे के आसिफ साहब का स्टूडियो, उनका बेटा मिलने आया एक दिन शम्मी कपूर, और इनका मेकअप रूम बंद था पृथ्वीराज जी का, और के आसिफ साहब घूम रहे थे। आवा बेटा क्या हुआ? बोले पापा से मिलने हैं। नहीं, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे। क्यों? अभी अकबर नहीं आया उनके अंदर। ये बोले यार ये क्या अकबर नहीं आया, मतलब क्या? कपड़े तो पहने हुए अकबर के। नहीं, वो वेट कर रहे हैं। आप देखिए, इतना बड़ा एक्टर और अपना थिएटर चलाते थे, कितने लड़कों को ट्रेन किया, वो आदमी वेट कर रहा कि प्रेरणा ये इंस्पिरेशन कब आएगी, और क्या से भी वेट करेंगे, आने दो। बेटे को मैंने नहीं दिया। एक दिन ऐसा हुआ, दो दिन ऐसा हुआ, नहीं मिलने दिया। फिर एक दिन दरवाजा खुला, बोले अकबर आ गया, अकबर आसिफ चलो।
0: भाई बड़ा पेशेंस और बड़ा वक्त था पुराने लोगों के पास, यूं ही नहीं कल्ट फिल्में बना देते थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

इंडियन सिनेमा के वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट डायरेक्टर्स राज खोसला एक प्लेबैक सिंगर बनना चाहते थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन थैंक्स टू देवानंद की टैलेंट पहचानने की कला, राज खोसला डायरेक्टर बन गए। देवानंद साहब ने उनको अपनी पहली होम प्रोडक्शन बाजी फिल्म में डायरेक्टर गुरुदत्त के साथ असिस्टेंट डायरेक्शन करने का मौका दिया। इसके बाद दोनों ने साथ में बहुत सी फिल्में की जिसने देवानंद साहब के करियर को काफी पुश दिया। CIG, काला पानी, 16 साल, बम्बई का बाबू। अच्छा, एक पुराने इंटरव्यू में ना राज खोसला साहब ने शेयर किया था कि राज खोसला साहब जिस तरह से गाने शूट करते थे, जो एक्चुअली उनकी स्पेशलिटी थी, उससे देवानंद साहब कई बार थोड़े अनकंफर्टेबल हो जाते थे। जैसे गाना था जिसमें देवानंद साहब को सिर्फ चलते रहना होता है, चलना है, चलना है, चलना है, चलना है। तो देवानंद साहब ने खोसला साहब से पूछा कि भाई मैं इस गाने में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना है, क्योंकि उनको ऐसे बहुत आदत थी एक्टिंग करते हुए अपने हाथ इस्तेमाल करने की। तो खोसला साहब ने उनको सिर्फ एक ही डायरेक्शन दी कि तुमको चलना है और हैंडसम दिखना है और कुछ नहीं करना है। और उस गाने में देवानंद साहब क्या चले हैं और क्या हैंडसम दिखे हैं। CID फिल्म का ये गाना पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: द लेजेंडरी म्यूजिक कंपोजर मदन मोहन जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनको और उनके म्यूजिक को ना उनके कंटेम्प्रेरीज, उनके सीनियर्स बहुत रिगार्ड और अप्रिशिएट करते थे। सुनिए एक बार लेट नौशाद साहब ने इनके म्यूजिक के बारे में क्या कहा था।
1: मदन मोहन साहब बड़े सुरीले कंपोजर थे, खासतौर से गजलें जो कंपोज की बहुत ही लाजवाब। मैंने एक दफे उनकी गजल ऐसी में प्यार की आबरू वो जफा करे करे मैं वफा करूं, तो मैंने सुनी वो गजल, इतनी पसंद आई मैं मदन साहब के घर गया। मैंने कहा भाई तुम्हारी इस गजल पर मेरा सारा काम कुर्बान। तो रोने लगे, बेचारा अरे नौशाद साहब क्या मैं आपसे बड़ा जूनियर हूं। अरे मैंने कहा इसमें जूनियर सीनियर की बात नहीं होती, अच्छी चीज अच्छी चीज है, तुमने बड़ी अच्छी चीज ये बनाई।
0: वैसे जिस गजल की इन्होंने बात की वो अनपढ़ फिल्म से है, इसी का एक और माइंड ब्लोइंग गाना सुनते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Mirci. Iskabana, uskabana, sakabana. Yabala. Murga, murga. La vieva la murga. Mirci, murga.
1: हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना। हाँ
1: बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूँ?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: यार जरा ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार।
1: अब
3: मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

चल चल चल चल चलत चलत जब ठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बाटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट मिर्ची
1: हेलो हेलो
2: सर वेरी गुड इवनिंग मैं
1: हाँ बोलिए
2: सर सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का
1: बनवाया था भैया क्या हो गया नहीं क्या बात
2: सर तो सर पूरा बता
1: क्या करो भैया कहाँ क्या हो गया
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को कहीं पे यूज किया आपने कुछ परचेजिंग करी उससे
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो क्या कर रहे हो
2: आई एम सो सॉरी सर ऐसी कभी कभी हो जाता है सर सर उससे कुछ परचेज किया आपने
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर सर मैं आपसे कहना चाह रहा था सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था सर बस फाइनली ये बता दीजिए कुछ परचेज किया आपने उससे कुछ खरीदा था
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा भैया पागल है क्या
2: आई एम सो सॉरी सर आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे
1: पागल पागल है
2: अब तो देने पड़ेंगे सर
1: हेलो
2: अब तो देने अब तो फंस गए देने पड़ेंगे अब तो फंस गए देने पड़ेंगे
1: कौन बोल रहा है विपिन
2: नहीं सर तो अब तो बैंक में आना पड़ेगा बैंक का खाना खाना पड़ेगा बैंक के पैसे देने पड़ेंगे
1: पागल है कि दिमाग खराब है क्या सर पैसे देने पड़ेंगे
2: अब तो फंस गए सर
1: हेलो
2: सर आप फोन मत काटिएगा प्लीज मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ मैंने एक मजाक किया छोटा सा मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था आपका मुर्गा बन गया है
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई देने पड़ेंगे
2: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे आप अब भी नहीं समझे मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं
2: जी अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: और सुनता है सबकी, करे उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स

0: जो सुनता है सबकी करे उसका ध्यान, देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज़ नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: सिर्फ लंबी नहीं, एक पीसफुल और क्वालिटी लाइफ जीने के लिए इमोशनल बैलेंस कितना जरूरी होता है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: आपने जो कहा ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है क्योंकि हम फियर में रहते हैं, तो ज्यादातर जो माहौल होता है वो होता है कि तारीखों में व्यतीत हो रहे हैं हम, आज हैं मगर अतीत हो रहे हैं, तो हर पल यही होता है कि एज एवरी सेकंड पासेस हम थोड़े थोड़े ओल्ड हो रहे हैं। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ वर्जन लाइक दिस जहां पे हम अपने आप को हमेशा कहें कि यार हम पुराने हो रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हाउ टू कीप योरसेल्फ अप टू डेट।
4: किसी ने कई बार बहुत सुंदर कहते हैं ना, इट्स नॉट हाउ लॉन्ग यू लिव, इट्स हाउ वेल यू लिव।
3: बिल्कुल।
4: सो व्हिच मींस ऐसा नहीं है, इवन इफ यू लिव लॉन्ग इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट वो जरूरी होता है कि आप जिए तो बहुत लंबा, पर आप भय में जिए, बहुत फियर में, बहुत चिंता में, उदासी में, डिप्रेस्ड, तो भी तो कोई फायदा नहीं है। एंड इवन इफ यू डिडंट लिव फॉर टू लॉन्ग बट यू लिव्ड हैप्पीली एंड यू गेव अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू अदर पीपल, आपने इवन इफ यू डिडंट डू एनीथिंग ग्रेट, यू नो इट्स नॉट अबाउट कि आपने कुछ बहुत ही महान किया है, लेकिन आप ऐसे थे कि जहां गए आपने खुशी बिखेरी, आपने सबकी दुआएं कमाई, आई थिंक दैट्स अ लाइफ लिव्ड वेल।
3: बिल्कुल, आनंद में रश करना कहते हैं काका कि भाई जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। और बहुत खूबसूरत बात कही आपने इसका उन्होंने, और अगर इसका सही मायने हम समझ लें तो वो वही है जो आप कह रहे हैं कि भाई आपने खुशियां बटोरी की नहीं, वर यू एबल टू मेक अ डिफरेंस टू अ लॉट ऑफ पीपल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स, सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
2: बढ़ती एज के साथ इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी सबसे बड़ी ताकत क्यों बन जाती है, आइए इसे समझे।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: तो फिजिकल डिपेंडेंसी कभी कभी हम कितनी भी प्लानिंग कर लें, हाँ, हो जाती है। आदमी बीमार पड़ जाता है, मेंटली कभी कभी आपकी कुछ बीमारियां हो जाती हैं, चाहे वो अल्जाइमर्स हो, पार्किंसंस हो, कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं होती। और उससे क्या होता है, जो सबसे बड़ी चीज होती है इंसान के पास, वो होता है सेल्फ रिस्पेक्ट। मुझे हमेशा ऐसा लगता है, धीरे धीरे ना उसका एक ऐसा महसूस होने लगता है कि वो कम हो रहा है, क्योंकि आप सडनली लोगों पे डिपेंडेंट हैं। और जब आप लंबे समय तक लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ जो है वो किसी और के कंट्रोल में है, मैं वो नहीं कर पा रहा जो मैं करना चाहता, अब मुझे वही करना पड़ता है जो मुझे लोग कह रहे हैं कि यहाँ बैठो, ऐसा खाओ, इस समय वॉशरूम भी इसी समय जाओ। उस केस में अपने आप को कैसे स्ट्रेंथन करें?
5: सेल्फ रिस्पेक्ट को पहले समझना बहुत जरूरी है कि सेल्फ और बॉडी भी अलग है। मेरा शरीर बीमार है,
4: मैं बीमार नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात।
5: लेकिन अगर आप बार बार ये कहते रहेंगे कि अब तो मेरे पास कोई पावर नहीं है, मैं अपनी मर्जी से कुछ कर नहीं सकता, मैं को इनके अनुसार चलना पड़ता है, सो यू आर गेटिंग इनटू अ विक्टिम मोड ना, मैं बेचारा। आप अपने को ये भी थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं कि है, अरे मेरे पास कोई है तो मेरी देखभाल करने वाला, मेरे को सपोर्ट करने वाला, कितने ऑक्यूपाइड होते हुए भी मेरे खाने का ध्यान रखते हैं, मेरे घूमने का ध्यान रखते हैं, तो थोड़ा तो मुझे भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी समझो बच्चे ही हैं, हाँ, और अगर वो वर्किंग है, सो इफ यू सी फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव, तो इतना इजी भी नहीं होगा शायद। उनको जब टाइम होगा तो ही वो वॉक पे ले जा सकते होंगे, उनको जब टाइम होता होगा तो ही वो सोचते होंगे जब हम खाते हैं आप हमारे साथ ही खा लें। सो मैं समझ रही हूँ कि कुछ आपके बंधन होते होंगे, बट देन देयर इज अ फ्लिप साइड ऑल्सो, मतलब आप चाहें तो इस तरह से भी सोच सकते हैं, आपकी सोच आपको दुख दे रही है, आपकी सोच आपको दुख दे रही है, और आप चाहें तो ये भी सोच सकते हैं कि आज मेरे आसपास कोई है तो मेरी देखभाल करने वाला, मुझे पूछने वाला, मुझे खिलाने वाला। आई थिंक ये भी एक हमारी जिम्मेवारी होती है कि अगर हम किसी पर डिपेंडेंट है, समझो कोई हमें हमारी केयर कर रहा है, इट कुड बी फैमिली, इट कुड बी समबडी लाइक अ वार्ड बॉय ऑल्सो, कोई भी हो सकता है, जो हमारी केयर कर रहा है वो तो सब कुछ करेगा ही। हम क्या कर सकते हैं, अगर हम भले फिजिकली डिपेंडेंट है लेकिन इमोशनली अगर स्ट्रांग है, हम इमोशनली हंसते हैं, खुश रहते हैं, उससे दो अच्छी बातें करते हैं, उसका भी उमंग बढ़ाते हैं, उसको भी दुआएं देते हैं, तो उसको हमारी सेवा करते हुए ये नहीं लगता कि उसको कुछ करना पड़ रहा है, इनफैक्ट उसको लगता है ये तो मेरा भाग्य है। यू नो व्हेन वी सॉ आवर एल्डर्स ग्रोइंग ओल्ड इन द स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको हम दादी जी कहते हैं, एल्डर सिस्टर्स, दे वर वेरी वेरी स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, तो फिर वो भी धीरे धीरे जब बुजुर्ग हुए तो उनको भी किसी की हेल्प लगती थी, सब वेट करते थे कि मेरे को चांस मिल जाए आज इनको वॉक पे ले जाने के लिए, आज इनके साथ कार पे, इनको आज हॉस्पिटल हम ले जाएं, आज इनको डॉक्टर के पास हम ले जाएं, तो हमें 5 मिनट इनके साथ बात करने को मिले,
4: बहुत खूबसूरत, क्या बात,
5: शायद कोई ऐसी बात हम कर लें जो, एंड वो एक एक ट्रिप जो कोई जाता था ना, आज भी हम किसी को मिलेंगे कहेंगे हम एक बार उनको हॉस्पिटल लेकर गए थे, उन्होंने उस समय ये बात कही थी, आज तक मुझे वो बात याद है। तो अभी क्या हुआ, आपने थोड़ी ना उनको हेल्प करी, इनफैक्ट आपका तो भाग्य बन गया। सो एनीबडी जो आपको लगता है कि आप किसी पर डिपेंडेंट है, उस व्यक्ति को ऐसा फील हो कि ये मेरा फॉर्च्यून है जो मुझे इनकी सेवा करने का चांस मिला।
4: बहुत खूबसूरत बात कही आपने।
5: इवन आई रिमेम्बर विद रतन टाटा, द बॉय हु शेयर्ड हिज एक्सपीरियंस, द यंग बॉय, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम,
4: आप शांतनु नायडू की बात कर रही हैं,
5: वेरी नाइस, एंड ही शेयर्ड इन हिज बुक दैट यू नो ही बिकेम द लाइट हाउस फॉर मी, जो रतन टाटा जी थे, लास्ट में उनके साथ जो टाइम स्पेंड किया, एंड ही वुड टेक केयर ऑफ हिम, बट उसके लिए वो एक अपॉर्चुनिटी बन गई कि उस मोमेंट्स में जो उसने सीखा, दैट गेव हिम द लाइट एंड माइट एंड यू नो सम काइंड ऑफ दिशा की दुनिया में आगे कैसे बढ़ना है।
4: बहुत खूबसूरत।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: अपने बुजुर्गों की केयर करते वक्त खुद को इमोशनली स्ट्रॉन्ग और एम्पावर्ड रखना जरूरी क्यों है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक सवाल आता है कि कई बार क्या होता है ऐसे लोगों के लिए, लोग कहते हैं कि यार तुम पहली बार मिले हो ना, एक बार मिलने में तो कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आई हैव गॉन टू अ फ्यू फ्रेंड्स जिनके लेट्स से मम्मी या पापा हैं, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, वो बहुत खुश रहते हैं और बोलते हैं तुम और आया करो, तुमसे टाइम स्पेंड करें, बड़ा मजा आता है। आज जब उनके बच्चों से मैं बात करता हूं, बोलते हैं यार तुम तो एक ही बार मिल रहे हो ना, हमें रोज रहना पड़ता है, रोज रहो तो पता चलेगा। और देयरफॉर द सिचुएशन इज ऑलवेज डिफरेंट जब आप एक बार मिलते हैं और रोज केयर करना पड़ता है, क्योंकि जो रोज केयर करते हैं ना, शायद उनमें कुछ बाती हो जाती है, अनबन हो जाती है, सेवा कर रहे हैं, भाव भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता ही रहता है खिटपिट, तो क्या करें ऐसे में?
4: सेवा करना माना देना, देने वाला भरा हुआ होना चाहिए। इसलिए जब हम एक बार ही किसी के लिए करने के लिए जाते हैं, हम उस दिन अच्छे मूड में होते हैं, हमारा उनके साथ कोई कार्मिक अकाउंट नहीं होता, हमारा कोई पास्ट एक्सपीरियंस नहीं होता, हमारे पास कोई पकड़ी हुई बातें नहीं होती, कोई हर्ट नहीं होता, सो इट इज ऑब्वियसली इजी। जो हमारे से एनर्जी फ्लो हो रही होती है वो बहुत प्योर होती है, उनको भी अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है। रोज में काफी कुछ हुआ होता है, आपको अपने को एम्पावर करना पड़ता है, लेट को करना पड़ता है, सी रोल रिवर्सल हो जाते हैं। आप भी तो एक दिन बच्चे थे, एक बात को 10 बार पूछते थे, वो 10 बार आपको एक ही बात समझाते थे, प्यार से समझाते थे, नहीं प्यार से समझाया तो वो राइट पेरेंटिंग नहीं थी। आखिर तो पेरेंटिंग यही होती है ना कि बच्चा एक ही चीज 10 बार पूछता है, तो पेरेंट क्या करता है, एक ही चीज 10 बार बताता है
3: प्यार से।
4: आज जब कोई बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं ना, वो बच्चे जैसे बन जाते हैं, वो एक ही चीज 10 बार पूछते हैं, उस समय पर आपको अपने को याद दिलाना पड़ता है कि ये लास्ट के जो उनके 5-10 ईयर्स है, ये रोल रिवर्सल है, और मेरे को ये जो सस्टेनेंस है बहुत प्यार से, इसमें बहुत पेशेंस लगता है, बहुत प्यार से और पेशेंस से करनी है। आई टेल यू, अगर हम नहीं करेंगे ना तो फिर रिग्रेट रह जाएगा।
3: ये बहुत खूबसूरत बात है आपने कही कि ये याद रखना कि बड़े प्यार से उन्होंने 10 सवालों को जवाब दिया था, चाहे आपने 100 बार पूछा हो, और जब आप वो आज वो ऐसा कर रहे हैं तो उसमें बहुत खूबसूरत एक दो लाइनें हैं। वो कहते हैं कि नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों पर अदब से चलना, नीचे गिरे हुए सूखे पत्तों पर अदब से चलना, कभी कड़ी धूप में तुमने इन्हीं से पनाह मांगी थी। तो बहुत प्यारी लाइन है, शायद ये कहीं ना कहीं कह जाती है कि ये विधि का विधान है कि आप भी, हम सब भी एट सम डे सम पॉइंट इन टाइम बड़े होंगे, बुजुर्ग होंगे, और जिनको हमने बड़ा किया वो इसलिए कहते हैं द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो बहुत खूबसूरत लाइन इसमें कही गई है कि रोल रिवर्सल तो होगा, और अगर हमने पुण्य अच्छा किया है और वैल्यूज अच्छे दिए हैं तो शायद हमारे काम आएगा वो।
4: हम भी एक दिन बूढ़े होंगे।
3: बिल्कुल।
4: देखो, कुछ कर्म ऐसे भी करने चाहिए, क्योंकि लॉ भी तो है ना, जैसे कर्म करेंगे वैसा भाग्य। आज ऐसा नहीं है, हम अगर किसी बुजुर्ग को ठीक से ट्रीट नहीं करते तो ऐसा थोड़ी ना है कि हम बुजुर्ग नहीं होंगे एक दिन। यू नो, बट द प्रॉब्लम इज व्हाट, द प्रॉब्लम इज हम थोड़े से खाली हैं। जैसे भी बच्चे भी हैं, समझो काम पर जाते हैं, स्ट्रेस बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत है, जेलसी है, एंगर है, आपको इतना डिप्लीट कर देता है कि उसके बाद कितनी ही आपके पास कोई सोल में ताकत रहती है देने की।
3: बिल्कुल सही।
4: पार्टनर को देने की नहीं रहती, बच्चे को देने की नहीं रहती, तो पेरेंट तो फिर और नेक्स्ट हो जाता है, देने का ही कुछ नहीं रहता। तो जब तक अपने को भरेंगे नहीं तो देंगे क्या, और वो पेरेंट कई बार सारा दिन इंतजार कर रहा होता है कि आप आएंगे और 5 मिनट उनके साथ बैठेंगे।
3: बिल्कुल।
4: आज उनकी फिजिकली संभाल तो एक वार्ड बॉय भी कर सकता है, लेकिन अपने बच्चे से, अपने परिवार से तो उनको प्यार चाहिए ना, एक्सेप्टेंस चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। कभी कभी वो ही कोई एक ऐसी लाइन कह के चले जाते हैं सुबह या रात में,
3: जो पूरा दिन निकाल देता हूँ,
4: पूरा दिन उनको चुभ जाती है।
3: मुझे याद है बीच में मैं रेकी सीख रहा था, तो मैं बहुत एक्साइटेड होता था, तो मैं बोलता मैं इसकी भी हीलिंग करूँ, मैं उसकी भी हीलिंग करूँ। तो मेरे दोस्त ने कहा बहुत अच्छी बात है, तुम सबकी हीलिंग करना चाहते हो, लेकिन हील करने से पहले तुम में एनर्जी का यू नो ये डिप्लीट हो रहा है, इसको रिप्लीट करना बहुत जरूरी। जब तक ये एनर्जी आएगी नहीं तुम दोगे कहाँ से।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सर्वस्व सिद्धि बुद्धि सहिताय श्री गणपतये नमः।
1: टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: इमोशनल हीलिंग की शुरुआत खुद को समझने और एक्सेप्ट करने से कैसे होती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: धीरे धीरे क्या होता है, चाहे पार्टनर हो, बच्चा हो, ऑफिस हो, हमारी एनर्जी डिप्लीट हो रही होती है। तो शाम तक जब हम आते हैं, शायद अपने खुद के पेरेंट को देने के लिए कुछ नहीं होता, तो इसको कैसे भरें?
4: अभी इस बार यूएन में योगा डे का प्रोग्राम था, तो उसमें हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव सिस्टर जयंती थे जो शेयर कर रहे थे, एंड देन शी सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। शी सेड आप सभी दादी जान की थी, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, उन्होंने 104 इयर्स तक सर्व किया।
3: अच्छा।
4: एंड शी सेड दादी जी यूज्ड टू ऑलवेज से कि मैं बहुत सेल्फिश हूं, एंड इट डजंट गो विद हर ना, बिकॉज उनके दिन में से 24 में से 18 घंटे तो देने में जाते थे। दे रहे हैं, मिल रहे हैं लोगों को, साथ कॉन्फ्रेंसेस में है, थ्रू द डे शी वॉज मीटिंग पीपल। तो सेल्फिश क्यों है? तो उसने कहा, मैं अपना कुछ नहीं देती।
3: अच्छा।
4: मैं अपना कुछ नहीं देती, आई एम जस्ट अ मीडियम ऑफ गॉड, आई एम जस्ट अ चैनल। मैं उससे लेती हूँ और देती हूँ, इसलिए कभी फटीक, बर्नआउट, कंपैशन फटीक, ये सब अक्षर मुझे समझ में नहीं आते। ये तब होता है जब आप अपने से दे रहे हैं। तो हर सोल की एक लिमिटेड कैपेसिटी है, कहीं ना कहीं आप थक जाएंगे, कहीं ना कहीं आप डिप्लीट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं आप कहेंगे मैं ही कब तक देता रहूं।
3: सही बात।
4: अगर आप उस सोर्स से नहीं कनेक्ट होते, अगर आप परमात्मा से, गॉड से, सुप्रीम फादर से, आप जो शब्द भी कहना चाहे, अगर आप रोज कनेक्ट नहीं होते और आप उससे लेकर के नहीं देते, तो फिर नहीं पॉसिबल। इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि आप रोज आप करो तो आपको पता चलेगा। तो रोज करने के लिए तो आपको भी तो कहीं से अपने को भरना पड़ेगा ना। आपका कप ही खाली है तो आप क्या देंगे?
3: तो भरें कैसे? आप कह रहे हैं कि स्पिरिचुअलिटी इज वन वे टू डू इट।
4: स्पिरिचुअलिटी इज द ओनली वे टू डू इट, रियली। आई मीन स्पिरिचुअलिटी मीन्स कनेक्टिंग टू स्पिरिट्स फादर ना। सोल का जो फादर है, एक है शरीर का पिता, वो आपके फिजिकल नीड्स हैं, आपकी फाइनेंशियल नीड्स हैं, आपकी एजुकेशनल नीड्स हैं, सबकी केयर करता है। पर एक है सोल का फादर, सुप्रीम सोल। सोल की जो नीड है, प्यार है, खुशी है, रिस्पेक्ट है, आनंद है, एक्सेप्टेंस है, आपको जब मिलेगा तो ऑटोमेटिकली, देना नहीं पड़ता है। सिर्फ देना नहीं पड़ता है, जो आप हैं वो आप रेडिएट करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट।
3: सही है।
4: कहने में होता है, देना पड़ता है। पर होता नहीं है। जिसकी जो पर्सनालिटी है
3: वो ऑटोमेटिक हो जाता है।
4: वो जब उस एनवायरमेंट में जाएगा तो वो इट्स लाइक जो परफ्यूम आपने सुबह यू वेयरिंग,
3: वो स्प्रेड होगी,
4: वो होना ही है उसका फ्रेग्रेंस। आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसको स्टॉप नहीं कर सकते।
3: क्या बात।
4: जो आपका वाइब्रेशन है, चाहे वो इरिटेशन का है, चाहे वो एंगर का है, चाहे वो जॉय का है, आप उसको लेकर के चल रहे हैं। आप जिस रूम में एंटर होंगे, जिससे मिलेंगे, यू विल स्प्रेड इट।
3: ब्यूटीफुल, वेरी नाइस।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
5: भारतवर्ष की पुण्य धरा पर गंगा मैया के अवतरण की ये कथा गंगा जल की ही भांति पावन और मनभावन है। गंगा अवतरण की ये कथा न केवल कानों में रस घोलती है, बल्कि आत्मा को भी तृप्त करती है। तो सुनिए कैसे हुआ पतित पावनी गंगा मां का धरती पर

राजा सगर के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा जब कपिल मुनि के आश्रम में पाया गया तो राजा के 60,000 पुत्रों ने आश्रम में धावा बोला।

राजा भगीरथ की कठिन तपस्या से ब्रह्मा ने धरती पर गंगा के अवतरण का वरदान दिया और ब्रह्मा के वरदान को भगवान शिव ने भी सिर माथे पर धारण किया। भगवान विष्णु के श्री चरणों का ये गंगा रूपी

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब बुजुर्गों की बातें रेपिटेटिव लगने लगे तब उन्हें पेशेंस और एम्पैथी के साथ कैसे समझें? आइए समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो हाल फिलहाल में सिस्टर श्रेया, मैं किसी से मिला था और वो कह रहे थे कि यार बहुत बोर करते हैं, क्योंकि कई बार ये सुनने को मिलता है क्योंकि उनकी जो लाइफ है और उनके साथ जो गुजरा है।
4: कौन बोर करते? पेरेंट्स?
3: हाँ, मतलब कोई भी बुजुर्ग हैं,
4: बुजुर्ग
3: उनके साथ जो बैठते हैं, वो यार वो पुराने दिन के, हमारे जमाने में हम 1 रुपए में सामान ले आते थे वगैरह वगैरह, वही स्टोरी मैं 100 बार नहीं सुन सकता। तो कभी कभी जो यंगर जनरेशन है वो ओल्डर जनरेशन के साथ इसलिए भी नहीं टाइम स्पेंड करना चाहती क्योंकि इमोशनल हीलिंग तो ठीक है, फिजिकल डिपेंडेंसी भी ठीक है, लेकिन आप बोलते हैं यार मैं बहुत बोर हो जाता हूँ, बियॉन्ड अ पॉइंट है, मेरे पास कंट्रीब्यूट करने के लिए कुछ नहीं है, वो तो अपनी दुनिया में चले जाते हैं, नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं, और मेरे पास बियॉन्ड जस्ट सिटिंग एंड लिसनिंग, क्योंकि मैं स्टोरी 100 बार सुन चुका हूँ, कितनी बार उनको बोलूंगी सुन चुका हूँ, फिर से मत सुनाइए, तो इसका क्या करें?
4: दो बातें हैं। पहला, जैसे हमने कहा कि वो जो बुजुर्ग है अगर वो भी सिर्फ इतना ही करता है कि खुश रहता है, उनके बारे में पूछता है, उनकी स्टोरी में थोड़ा इंटरेस्ट लेता है, उनके जीवन में इंटरेस्ट लेता है, अपने एक्सपीरियंसेस से उनको एम्पावर करता है, तो उनको अच्छा लगेगा, उनको भाग्य महसूस होगा। जो हमने पहले डिस्कस किया कि आप ऐसे बने कि वो आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहे। सेकेंडली, अगर आपको लगता है कि वो नहीं कर पाते, कोई एक ऐसा पेरेंट है, कोई ऐसा बुजुर्ग है जो इमोशनली वीक है, आपको लगता है कि अब इस पॉइंट पर आकर के वो चेंज नहीं हो सकते, इट इज ओके। कंपैशनेट लिसनिंग बहुत जरूरी है। कंपैशनेट लिसनिंग एक पार्ट होता है पर्सनैलिटी का, कि केवल बैठ करके सुनना और इरिटेट नहीं होना, अपसेट नहीं होना, और रहम के भाव से सुनना सेवा है। आप इसको सेवा समझे, आप इसको ये नहीं समझे कि मजबूरी है, मेरे से नहीं होता, मेरे से नहीं होता। कई चीजें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपके पेरेंट है और ये आपकी उनके प्रति सेवा है। आप सेवा समझ करके करेंगे, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, इवन ग्रैंड चिल्ड्रन। अभी दुनिया में इतने लोग हैं जिनका कोई कनेक्शन नहीं है उस बुजुर्ग से, वो वॉलंटियर कर रहे हैं। अभी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, यंग बच्चे वॉलंटियर कर रहे हैं, हम 2 घंटा आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, हम कार्ड्स खेलेंगे, हम आपको वॉक पर ले जाएंगे। कई बच्चे वॉलंटियर करते हैं, हम रोज आएंगे, आप लिस्ट बना के रखना, आपको कुछ चाहिए तो, मेडिसिन चाहिए, सामान चाहिए, हम आपको दे करके जाएंगे। तो वो कैसे कर रहे हैं? वो भी तो वही है ना, लेकिन उनके अंदर वो भाव है कि ये डिपेंडेंट है, हम यंग है, हम सेवा कर सकते हैं। वो कर सकते हैं तो हम घर के फैमिली मेंबर्स तो कर ही सकते हैं ना। सिर्फ वन थॉट, ये सेवा है।
3: वो वही बात है ना कि एक बार करना पड़ता है उनको जो वॉलंटियर कर रहे हैं, लेकिन
4: नहीं, वॉलंटियर्स तो रोज करते हैं और सेल्फलेसली करते हैं।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: पास्ट के रिग्रेट्स और फ्यूचर की वरीज के बीच में प्रेजेंट में जीना इतना जरूरी क्यों होता है, आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: वो कहते हैं ना कि एक उम्र के बाद बीते हुए उम्र की बहुत याद आती है, अफसोस ये है कि वो उम्र उम्र भर वह नहीं लौटती। और इस लूप में रहने से बजाय ये इम्पोर्टेंट है कि आप आसपास थोड़ी खुशी खोजें।
4: आई थिंक कभी कभी ये ऐसा तब भी होता है इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग आपका आज,
3: हाँ प्रेजेंट मोमेंट।
4: हाँ मतलब कभी ज्यादातर हम पास्ट में क्यों रहते हैं, क्योंकि अगर आप इवॉल्व हो रहे हैं और आप बेटर बन रहे हैं, व्हाई वुड यू वांट टू गो बैक, टेल मी। यू नो हम कितने इमेच्योर होते हैं, फिर हम मेच्योर होते हैं, हमारी टॉलरेंस बढ़ती है, हमारी पावर टू मतलब कितनी सारी पावर्स टू एक्सेप्ट लेट गो बढ़ती हैं, यू बिकम अ बेटर पर्सन। व्हाई वुड यू वांट टू गो बैक टू समबडी हु वाज चाइल्डिश और वाज मेकिंग मिस्टेक्स। अगर आप हर दिन लर्न कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं और बेटर हो रहे हैं, तो आप वापस नहीं जाना चाहते बिकॉज यू आर मोर कम्फर्टेबल विद हु यू आर टूडे। लेकिन अगर आप नहीं इवॉल्व हो रहे तो फिर आप वो कॉलेज डेज और स्कूल डेज और पास्ट में जाने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन पास्ट ही अच्छा था
3: ये जरूरी नहीं है।
4: नहीं नहीं, और आज बस दुखी है और गम में है वो ठीक नहीं,
3: ऐसा नहीं है,
4: वो ठीक नहीं।
3: हाँ वो तब तो फिर वही वाली बात होगी ना, दिनवीर मुकेश साहब का बहुत प्यारा गाना था कि लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया। तो वो जरूरी नहीं है, आप ये डिसाइड कर सकते हैं और उसके तरीके भी होते हैं।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Emotional dependency कब तक healthy होती है और कब वो हमारी peace को affect करने लगती है? आइए जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: जो हमने शुरू में बात की थी, कभी कभी ग्रोइंग ओल्ड कैन बी वेरी लोनली, कि क्योंकि आपके साथ जो पले बड़े थे वो शायद अब नहीं है, आप किसी जॉब में थे अब शायद वो नहीं है, तो उनके जो नाते हैं वो निकल गए, शायद आपका शहर चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं, तो कभी कभी आपके आस पड़ोस वाले ही नहीं रहते। तो उस समय इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ ऐसी चीजें करें जो आपको खुशी दे, चाहे वो जर्नलिंग करना हो, चाहे वो एक नया स्किल सीखना हो, चाहे वो एक नया स्पोर्ट ले लेना हो। और कई बार कहते हैं कि स्पोर्ट जरूरी नहीं कि आउटडोर स्पोर्ट हो, इट कैन बी एन इंडोर स्पोर्ट, इट कुड बी चेस, इट कुड बी क्रॉसवर्ड पजल्स। में कई लोगों को देखता हूँ सारा दिन मसरूफ रहते हैं उसमें और वो अपना टाइम बखूबी निकाल लेते हैं।
4: इमोशनल डिपेंडेंसी है ना, डिपेंडेंसी है किसी चीज के ऊपर, चाहे वो व्यक्ति है, वो पोता है, वो दोता है, वो कोई भी है, डिपेंडेंसी तो है ना, हर्जा नहीं है। इट इज नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट सेइंग इट इज रॉन्ग, पर रॉन्ग कब हो जाता है कि जब वो चीज आपको नहीं मिल रही तो आप बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, किसी चीज का आधार ले लेना, किसी का इतना ज्यादा आधार ले लेना कि वो चीज नहीं मिल रही तो वो आपको ऊपर नीचे कर रही है, आप हलचल में जा रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें इमोशनल इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, इमोशनली।
3: बहुत खूबसूरत।
4: इंडिपेंडेंस की तो हम बात करते हैं, पर हम इमोशनली इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। तो वो भी जैसे आपने कहा कि अपनी खुशी की जिम्मेवारी उठानी चाहिए, यू नो वी हैव टू लर्न दिस। हमें लगता है कि हमें खुश करने के लिए कोई दूसरा होना चाहिए, ये नहीं है। वी ऑल हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुशी की, कि हम अपने को कैसे खुश रखें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Energy. It's hot.
1: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी। बनीता पारिख जी अहमदाबाद से लिखती हैं कि मुझे एंगर इश्यूज बहुत ज्यादा हैं, ट्रिगर जल्दी होती है और नेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा आती है, क्या करूं?
3: एंगर इश्यूज क्या है? कोई भी चीज आप बार बार करते हैं तो बहुत नेचुरल नेचर हो जाती है। अगर किसी को बहुत गुस्सा आता है, मना वो बहुत पहले आप बड़ी बात पे करते थे, फिर आप जैसी कोई चीज आप करते रहे। हमने वो एग्जांपल एक बार पहले भी लिया था कि जापान में एक बार रिसर्च हुई थी, तो एक कंपनी थी जहाँ पर उनको बहुत गुस्सा आता था जो काम करने वाले थे, तो उन्होंने क्या किया कि बेसमेंट में ऐसे पैडेड वॉल्स बनाई, वहां पर बेसबॉल बैट्स रखे और कहा कि किसी को भी गुस्सा आए तो कस्टमर पे नहीं निकालना, जो एम्प्लॉयज थे आप नीचे जाओ, अपना फ्रस्ट्रेशन निकालो, बैट से आप वॉल को हिट करो, फिर ऊपर आकर के कस्टमर को डील करो। एंड दे डिड दैट रिसर्च फॉर फ्यू मंथ्स। अब रिजल्ट में क्या आया, मतलब उसमें तीन ही चीजें हो सकती हैं, या तो उनका गुस्सा बढ़ गया या कम हो गया या सेम रहा। तो जो रिजल्ट, आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा?
2: मतलब होना चाहिए कि कम हो गया, क्योंकि उनको एक जरिया मिल गया निकालने के लिए, लेकिन आपने मुझे पहले बताया था इसके बारे में
3: जी,
2: उनका बढ़ गया क्योंकि वो आदत बन गई थी अब उनकी।
3: ये जो हमें लगता है ना कि निकाल देंगे तो खत्म हो जाएगा, लेकिन निकालने से खत्म नहीं होता, आपको वो चीज करने की आदत पड़ रही है। तो अगर आप गुस्सा बार बार करेंगे तो वो आदत पड़ती चली जाएंगी, और इसीलिए फिर छोटा ट्रिगर भी काफी होता है। पहले कोई बड़ी बात होती है तो आप करते हैं, लेकिन करते जाएंगे तो फिर छोटा सा ट्रिगर, छोटा ट्रिगर क्या होता है, आपने मेरी तरफ देखा नहीं, मैं अंदर आया था, मैंने आपको नमस्ते किया, आपने मुझे नमस्ते नहीं किया, आपने मुझे इग्नोर कर दिया। उसको पता भी नहीं होगा, उनका इंटेंट भी नहीं होगा, लेकिन आपका मन कहेगा आपने मुझे इग्नोर कर दिया, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। इट कुड बी एज स्मॉल एज दैट। इसीलिए आप अभी शिफ्ट लाना पड़ेगा ना। एंगर से शिफ्ट होना क्या है कि अभी हम छोटे छोटे ट्रिगर में ट्राई करना शुरू करें। आज से अपने को बोलें कि अभी कोई बात होगी तो हम रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन गुस्सा नहीं करेंगे। आप अब 10 दिन, अगर 10 बार दिन में करते हैं, एक बार होगा, 9 बार नहीं होगा। बट वी हैव टू स्टार्ट टेकिंग बेबी स्टेप्स। 9 बार आप रिएक्ट करेंगे, 1 बार आप रिस्पॉन्ड करेंगे। रिस्पॉन्ड करने का मतलब क्या है, किसी ने नहीं भी किया तो आपने न गलत सोचा। एंगर बिगिंस इन द माइंड, ये बोलने की बात नहीं है, लेकिन मन में डिस्टर्ब होना, वहीं से एंगर शुरू हो जाता है। एंगर के बहुत रूप है, इरिटेट होना, रेज, रूठना, बात नहीं करना, कोऑपरेट नहीं करना। हम टीम सारा काम कर रहे हैं, अब सडनली मेरे सर में दर्द है, मुझे कोई जरूरी काम है, आप है कुछ नहीं, लेकिन आप सहयोग नहीं देना चाहते, विड्रॉ कर लेना, वो सब गुस्से का ही रूप है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता कि अंदर पे वो गुस्सा है। गुस्सा फिर नफरत में बदल जाता है, नफरत फिर रिवेंज में बदल जाती है। तो स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। दिन में 10 बार आता है, 1 बार भी नहीं आपने नहीं किया, पैट योर सेल्फ कि कम से कम 1 बार तो नहीं किया। जस्ट लाइक व्हेन यू लीव स्मोकिंग,
2: एक कम हुआ, बहुत अच्छी बात है।
3: धीरे धीरे धीरे धीरे,
2: फिर कल नहीं किया, इट्स अ स्मॉल प्रोसेस।
3: फिर भी स्मोकिंग में शायद आप एक झटके से भी छोड़ पाएंगे, संस्कार ऑन ऑफ का बटन नहीं होता।
2: समय लगेगा,
3: थोड़ा समय लगता है, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन वो एक प्रैक्टिस है। कोई चीज प्रैक्टिस है तो डिफिकल्ट नहीं होती। ए लिखना है, ए लिखना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस से वो चीज बहुत इजी हो जाती है। ऐसे गुस्सा छोड़ना डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट थिंग नहीं करना है, इसका पूरा अंदर में डिटरमिन्ड थॉट होना चाहिए। सेकंड, अगले दिन से जब आप शुरू करेंगे, हो सकता है कि आप 10 बार में से 9 बार करें, 1 बार ना करें। ग्रेजुअली एक ऐसा दिन भी आएगा, 1 बार किया, 9 बार नहीं किया, हैव कंपैशन, हैव फेथ, बी डिटरमिन्ड, चला जाएगा।
1: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला इट्स हॉट
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। और यहाँ पर कॉफी को गर्म करने से पहले हम थोड़ा सा एटीट्यूड देते हैं। अब देखो, इंडियन पेरेंट्स जो हैं, जो अमेरिका में रह रहे हैं, उनकी दो तरह की वेदर अपडेट्स होती है। एक तो ये कि बेटा जैकेट पहन लो, और दूसरी होती है बेटा शादी का सीजन चल रहा है, तू कब करेगा शादी। और देसी एक्सपैट लाइफ जो होती है ना, वो फुल फिल्मी भी होती है। सुबह सुबह बेगल के साथ शुरुआत होती है, आफ्टरनून में थोड़ी सी दाल चावल की क्रेविंग होती है, और शाम आते आते फिर कॉफी शॉट्स का मन करता है। भाई तुम अगर सुबह सुबह तुम मुस्कुरा रहे हो, तुम्हारे बॉस तुमसे पूछ रहे हैं क्या हो गया, बिना वजह क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो बताना मत कि मिर्ची मॉर्निंग सुन रहे थे, जहां पर प्रिसिला आती है, जो लेकर आती है ऐसा कुछ जिससे तुम्हारा दिन सुपर ऑसम सुपर मिर्चीदार बन जाता है। अभी फटाफट से जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फटाफट से अपने मैसेजेस ड्रॉप करो, डू फॉलो मी देयर, एंड राइट नाउ बजाते तुम्हारे लिए कुछ मिर्चीदार बैंगर्स बैक टू बैक। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Burka, burka. La fiesta la burka. Mirchi, burka.
1: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
1: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
2: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है, पूरी दिल्ली में है। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
1: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
2: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
1: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
2: बोलो।
1: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
2: कौन सा?
1: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
2: अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
2: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
1: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
2: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
1: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
2: कुकर तो है।
1: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
2: अच्छा।
1: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
2: सोडा,
1: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
2: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो बना खाना बना रहा है?
1: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
2: मतलब उसको पकाऊं?
1: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सीटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सीटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सीटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
2: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
1: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
2: नहीं नहीं कोई, मैं रिस्क नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
1: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
2: चल जाएगी?
1: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
2: अबे कौन बोल रहा है तू?
1: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
2: अरे यार जरा ये भी बता दो कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
3: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग ईस्ट कोस्ट, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम करने वाले हैं थोड़ी सी टाइम ट्रैवलिंग। तो आज की तारीख यानी 22nd ऑफ मई, इस दिन क्या हुआ था हिस्ट्री में? सबसे पहले रिवाइंड करते हैं ऑल द वे टू 1849। एब्राहम लिंकन गॉट पेटेंट फॉर अ बोट लिफ्टिंग डिवाइस। हाँ जी, यूएस प्रेसिडेंट भी और इन्वेंटर भी थे। देन 1960, चिले एक्सपीरियंस द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक एवर रिकॉर्डेड, 9.5 मैग्नीट्यूड का। एंड गेमर्स पे अटेंशन, 1980 में पैकमैन वॉज रिलीज इन जापान, द ओनली येलो सर्कल दैट टॉट अस लाइफ का सबसे बड़ा लेसन। इंडिया में भी आज का दिन काफी हिस्टोरिक है। शेरशाह सूरी, द रूलर हु गेव अस द रुपया एंड हेल्प्ड बिल्ड द ग्रैंड ट्रंक रोड, पास अवे इन 1545 आज के दिन। 1989 में इंडिया सक्सेसफुली टेस्ट लॉन्च अग्नि मिसाइल फ्रॉम ओडिशा। ऑल्सो आज के दिन है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सो प्लीज आज उस एक पौधे को पानी जरूर डालना जो तुमने अपने अपार्टमेंट में रख रखा है। एंड फॉर ऑल माई मिस्ट्री लवर्स, आज के दिन है शर्लक होम्स डे टू, सो आज के दिन कोई केस वे सॉल्व कर देना। एंड इन केस यू आर वंडरिंग हु टू फॉलो ऑन इंस्टाग्राम, फटाफट से जाकर चेकआउट करो मेरा हैंडल मिर्ची प्रिस इज द हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 44। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: ये देसी अंकल्स की ना दो तरह की हॉबीज होती है, एक तो व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग के मैसेजेस भेजना और दूसरा फेसबुक पर अजीब अजीब सी सेल्फियां डालना। मैं हूँ प्रिसला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। सो लिसन टू दिस, बिग पी जो है हमारे, उन्होंने खुद से एक क्रिप्टिक पोस्ट ड्रॉप किया है ऑन ट्विटर। After reports of his hospital visit started circulating online, Mr. Bachchan ne likha hai, bokhla gaye hain log, vichar vyakt kiye. Meaning people got flustered and started expressing opinions. और इसके बाद इंटरनेट ने अपना सर खुजाया इतनी मेहनत मशक्कत की पता करने के लिए कि आखिर ये पोस्ट किस चीज के बारे में है। एंड देन बिग बी का माइक ड्रॉप जवाब आया, रिलैक्स गाइस। एंड देन केम द अमिताभ बच्चन लेवल का माइक ड्रॉप। व्हेदर पीपल अंडरस्टूड और नॉट, दे इवेंचुअली रिसीव्ड बैक व्हाट दे गिव। ये मिस्ट्री अभी तो सॉल्व नहीं हुई है, शायद इसमें बहुत लंबा टाइम लगने वाला है। गेट इट? ऐसे ही पोर जोक्स के लिए तुम जाकर मुझे फॉलो कर सकते हो। मिर्ची प्रोड्यूस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एज वेल एज एक्स, एंड व्हाट्सएप करो मुझे 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। टाइम फॉर सम मिर्ची दार बैंगर्स, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो माय स्लीपी देसी पीपल, उठ जाओ, अब वेदर का हालचाल बताने का टाइम आ चुका है। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। सो इफ यू प्लानिंग टू स्टेप आउट टुडे, आज बड़ा ही बॉलीवुडिश स्लो मोशन सेटअप मिलने वाला है तुमको। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 56 डिग्री फारेनहाइट, इट्स अ बिट क्लाउडी, लेकिन लास्ट 24 आवर्स में जिस तरह की बरसात हुई उससे ये होना तो बनता है। 3 मिलीमीटर की बरसात हमने देखी है पिछले 24 घंटों में, और अगले 24 घंटों में क्या होने वाला है, इट्स गोइंग टू रेन लेस देन 1 मिलीमीटर। सो अपने अम्ब्रेलाज आज साथ में कैरी करना बिल्कुल मत भूलना। अब टेम्परेचर पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं, इट्स हैंगिंग बिटवीन 55 and 66 डिग्रीज फारेनहाइट, बट बिकॉज द विंड इज मेकिंग इट फील अ लिटिल बिट, इट्स गोइंग टू फील लाइक 48 to 62 डिग्रीज फारेनहाइट। लेकिन अराउंड नून वी आर एक्सपेक्टिंग थोड़ा सा पार्टली क्लाउडी स्काइज, मतलब सन थोड़ा सा कैमियो अपीयरेंस देने वाला है बिफोर कम्प्लीटली डिसअपीयरिंग अगेन, जस्ट लाइक तुम्हारा वो सिचुएशनशिप जो चल रहा है। एंड फन फैक्ट ये है कि आज भी तुम्हें लेयर के प्लेयर बन के बाहर जाना है, अपने ऊपर SPF 50 वाला सनब्लॉक लगाना है और ढेर सारा पानी पीना है बिकॉज यू नीड दैट ग्लास स्किन। एंड नाउ स्टे काम, कैरी दैट जैकेट एंड ऑफ कोर्स मिर्ची सुनते रहो। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स। फटाफट से मुझे फॉलो भी कर लो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my desi people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. This is Mirchi Mornings का वो सेगमेंट जो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है. Around the world की अपडेट्स तुम्हें यहाँ पर मिलती है. सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप ड्रॉप्ड अ लाइन स्ट्रेट आउट ऑफ अ सिटकॉम. While talking about global tensions and possible travel plans, he joked that if he attends his son Donald Trump Jr.'s wedding in the Bahamas, he gets killed. And if he skips it, fake news kills him. Sir basically described every Indian wedding ka RSVP ever. Number two, the skies over the Black Sea got seriously tense. The UK's Royal Air Force says Russian fighter jets came dangerously close to one of their surveillance aircraft during a mission last month. One jet reported flew within 6 meters. That is absolutely not social distancing. And finally, Mount Everest turned into peak hour traffic. A record 274 climbers reached the summit in one single day from the Nepali side. Videos now show huge queues near the top. Imagine climbing the tallest mountain on earth only to hear, "Excuse me, bhaiya, thoda side dena." मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में. सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स. फटाफट से मुझे फॉलो करो. मेरा हैंडल नेम है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल मिर्ची दार बैंगर्स प्ले करती हूँ तुम्हारे लिए. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Mirchi.
1: Escabana, buscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vieja la burga.
2: Mirchi, burga.
3: Hello.
4: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है.
3: हाँ जी, हाँ जी.
4: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
3: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
4: होल्ड कर रहा हूँ.
3: हाँ जी, हेलो.
4: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
3: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
4: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
3: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है.
4: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
3: है 3rd K 35/14A 1st floor. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
4: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
3: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
4: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
3: मेरा सनसाइन कैंसर है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला.
4: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
3: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
4: मैडम, ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
3: बी पॉजिटिव. 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
4: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
3: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
4: वही तो मैं आपको. अरे मैडम,
3: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
4: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं? नहीं तो मैं. अरे मैडम, सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा.
5: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा. आपका मुर्गा बन गया रेडियो मिर्ची पे. आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
3: नहीं.
4: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my hard workers. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग. एंड आज का इंटरनेट ड्रामा कम्स कर्टसी ऑफ एन अमेज़न जॉब पोस्टिंग इन हैदराबाद दैट पीपल आर सीरियसली साइड आइंग राइट नाउ. हुआ ये कि द जॉब इज फॉर एन ऑपरेशंस मैनेजर का रोल एंड इट रिपोर्टेडली मेंशन स्टैंडिंग अप और वॉकिंग फॉर 12 आवर्स, लिफ्टिंग अप टू 22 किलोज एंड फ्रीक्वेंटली बेंडिंग एंड स्क्वाटिंग. मतलब ये जॉब था या क्रॉसफिट का सब्सक्रिप्शन? सोशल मीडिया इंस्टेंटली एक्सप्लोडेड विथ वन यूजर जोकिंग, व्हाट डज अमेज़न थिंक इंडियंस आर, डोंकीज? उफ, इंटरनेट ने अगेन जीरो चिल दिखाया. देखो, ऑब्वियसली वेयरहाउस एंड ऑपरेशन जॉब्स अराउंड द वर्ल्ड कैन बी फिजिकली डिमांडिंग, बट ऑनलाइन डिबेट इज ऑल अबाउट वर्क लाइफ बैलेंस, एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशंस एंड बर्नआउट कल्चर, स्पेशली फॉर देसी वर्कर्स हु ऑलरेडी थिंक ओवर टाइम इज अ पर्सनैलिटी टेस्ट. वैसे इसी से मुझे याद आया कि सो मेनी इमिग्रेंट्स आर स्टार्टिंग फ्रेश इन अमेरिका, जॉब हंट कर रहे हैं एंड इट इटसेल्फ फील्स लाइक अ फुल टाइम जॉब. न्यू कंट्री है, नो यूएस एक्सपीरियंस है एंड लिंक्डइन पर जाओ तो ऐसा लगता है तुमने लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है. विच इज वाई इफ यू आर लुकिंग टू बिल्ड स्किल्स एंड रियल वर्ल्ड हेल्थ केयर एक्सपीरियंस हियर इन द यूएस, चेक आउट एम्स एजुकेशन, द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज. A lot of their healthcare programs include clinical experience in hospitals and medical centers, and you only need a US equivalent high school graduation to apply. You can also call them at 908-222-0002. That's 908-222-0002. And also check out their website aimseducation.edu. That is aimseducation.edu. और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे कनेक्ट करो. मेरा हैंडल नेम इंस्टाग्राम और एक्स पर है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: इस गाने को गाया है फहीम अब्दुल्ला ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। फिल्म चांद मेरा दिल से सुनते रहिए चांद मेरा दिल, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
2: Hey there, my birthday babies of 22nd of May. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब बर्थडे के शाउट आउट का टाइम आ चुका है। सो इफ यू वर बॉर्न टुडे, आज कौन से सेलिब्रिटीज तुम्हारे साथ अपना हैप्पी वाला बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं? सबसे पहले वी गॉट द टेनिस सुपरस्टार नोवाक जोकोविच, ऑल्सो सेलिब्रेटिंग टुडे सुपर मॉडल नायोमी कैंपबेल, रजत कपूर वॉज ऑल्सो बॉर्न टुडे। And साथ में today marks the birth anniversary of Raja Ram Mohan Roy. He is often called as the father of Indian Renaissance. The man challenged social evils and pushed for reforms way before raising awareness became a thing on Instagram. तो आज का birthday quote specially for you. Growing older is mandatory, लेकिन acting your age is absolutely not important. तो खाओ पियो ऐश करो, केक काटो, कैलोरीज की चिंता मत करो, मुझे अपने birthday shout outs भेजो। Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X, that is MIRCHIPRIS. और WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi, that's 9033647244. फिलहाल stay tuned and stay hot.

0: Number question. Alright, मैं हूँ प्रिसला तुम्हारे साथ में. This is मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बारी आ चुकी है सोना एंड चांदी का रेट जानने की.
1: राज जोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग. गोल्ड रीडिंग एट $4,600. $4,600 पर ट्रेंड के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेंड कर रहे हैं, जो पिछले हफ्ते से थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड पर है. आने वाले मदर्स डे की सेलिब्रेशन के लिए 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए 12 इंस्टॉलमेंट्स में ज्वेलरी घर लेके जाएं और बिना किसी इंटरेस्ट के राज ज्वेल्स की टीम को पैसे दें. ये बहुत यूनिक फाइनेंसिंग ऑप्शन है ज्वेलरी की, जिसके अंदर आप पहली 12 किस्तें पे करने के बाद सेम क्रेडिट कार्ड दोबारा यूज कर सकते हैं नेक्स्ट परचेज की राज ज्वेल्स के साथ. सो आइए मिलके सेलिब्रेट करते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं RajJewels.com के साथ. थैंक यू. हैप्पी मॉर्निंग टू.
0: एंड देयर यू हैव इट, मिर्ची पर गोल्ड एंड सिल्वर का रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसला के साथ में. और अब मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Hey there, my Mirchi family. मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रही हूँ मिर्ची मॉर्निंग्स. और अब बारी है अराउंड द वर्ल्ड क्या चल रहा है जानने का. सबसे पहले इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी चेयर्ड अ 4.5 आवर मीटिंग विद मिनिस्टर्स आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम हिज 5 नेशन टूर. टॉपिक्स इंक्लूडेड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न्स लिंक्ड टू द मिडल ईस्ट सिचुएशन. रिपोर्ट से मिनिस्टर्स वर ऑल्सो आस्क्ड टू रैप अप पेंडिंग वर्क. नंबर टू पर यूके कोर्ट इज हियरिंग द केस ऑफ अ सिख मैन अक्यूज्ड इन अ फेटल स्ट्रीट फाइट इंसिडेंट इन साउथहैम्पटन. The accused says he acted in self-defense and feared his kinpin would be used against him during the altercation. The matter is currently under legal review. It's definitely a reminder that situations can escalate quickly. And number three for cricket, say heartbreaking news for Chennai Super Kings fans. CSK are officially out of the IPL 2026 playoffs after a heavy loss against Gujarat Titans. GT put up 229 runs while CSK got bowled out for 140. Three seasons without playoffs now, and somewhere every CSK fan is staring silently at the ceiling like it's Shah Rukh Khan's rain dance. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 with me, Priscilla. Sun rahe the Mirchi Mornings. Mujhe jaakar dekh bhi lo. Insta aur X pe mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieva la burga. Mirchi, burga.
1: Hello? Hello?
2: Sir, very good evening. Thanks a lot.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या बात है
2: सर, I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: मैं पागल पागल है क्या?
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या? पैसे देने पड़ेंगे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
1: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: 자. Mirchi Mornings. Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot. हेलो मेरे देशवासियों, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तो मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब हम सुनने वाले हैं सितारों की कहानी मेरी जुबानी।
1: मिर्ची राशि जोन
0: स्टार्टिंग विद एरीज यानी मेष राशि। आज बैलेंस जरूरी है। डोंट बिकम दैट पर्सन डूइंग 97 टास्क्स एंड देन क्राइंग ड्रामेटिकली एट 4 AM। लकी कलर इज बर्नट ऑरेंज, लकी नंबर इज 19। टॉरस यानी कि वृषभ राशि, समथिंग यू थॉट वाज फेलिंग, plot twist, it's actually working slowly but in your favor, just like desi parents figuring out Spotify. Lucky color is olive green, lucky number is 42. Gemini yani mithun rashi, unexpected changes incoming today, lekin honestly Gemini jo hai wo emotional software update par hi survive karte hain. Lucky color is electric blue, lucky number is 9. Cancer yani karak rashi, please avoid get rich quick ideas today. Agar koi dm mein kahe ki invest now, run faster than kids towards free samosas. Lucky color is grey. Lucky number is 27. Leo, yani ki siha rashi. Today is your karma points day. Help someone willingly. Universe screenshot le raha hai. Lucky color is red. Lucky number is 3. And last but not the least, Virgo yani kanya rashi. You're underestimating yourself again. Typical Virgo behavior hai. Once you start, you'll realize you actually know what you're doing. Lucky color is smoky lavender. Lucky number is 56. And that's it for Rashi Zone Part 1. Part 2 लेकर आऊंगी थोड़ी सी देर में on Mirchi Mornings. मेरा नाम है Priscilla. फटाफट से मुझे follow करो. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp पर मेरा number है 9033 Mirchi. That's 9033647244. And फिलहाल time है Mirchi Dar Bangers का. Stay tuned and stay hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

लकी नंबर इज 11, लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, अ लिटिल सेल्फ डाउट मे हिट टुडे बट डोंट स्पाइरल, यू आर लिटरली द ज़ोडियाक्स कमबैक स्पेशलिस्ट. लकी नंबर इज मिडनाइट पर्पल, लकी कलर इज 88. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, थिंक आउटसाइड द बॉक्स टुडे, एक्चुअली लीव द बॉक्स आउट, बर्न द बॉक्स. न्यू सॉल्यूशंस विल सेव ओल्ड प्रॉब्लम्स. लकी कलर इज Deal. Lucky number is 25. Capricorn yani Makar Rashi, spotlight is calling, stop acting shy, this is your sign to speak up in meetings instead of typing I agree in the chat. Lucky color is charcoal gold, lucky number is 64. Aquarius yani Kumbh Rashi, your imagination is powerful today, so chase weird ideas. Some of history's best inventions probably started with wait. Hear me out. Lucky color is neon mint. Lucky number is 7. And last but not the least, Pisces, yani mean Rashi, be kind. Yes, but don't let people emotionally use you like free Wi-Fi. Protect your peace at any cost today. Lucky color is rosewood pink. Lucky number is 31. And that's it for Mirchi Rashi Zone number 2. Main hu Priscilla, tumhare saath mein. Insta aur X par mera handle name hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. And WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: इस गाने को गाया है राघव चैतन्य और जानिता गांधी ने, म्यूजिक दिया है सचिन जिगर ने और लिरिक्स लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने। चांद मेरा दिल मूवी से सुनिए खासियत, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप, सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: माय फ्रेंड, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे थे मिर्ची मॉर्निंग्स। और अब रैप अप करने का टाइम आ चुका है। वी लाफ टुगेदर, वी गॉसिप टुगेदर, वी सर्वाइव्ड अनदर डे ऑफ ईमेल, स्टार्टिंग विद जस्ट सर्कलिंग बैक टू दिस। लेकिन जाने से पहले आज का फाइनल न्यूज नगेट तो तुम्हें देकर जाती हूँ। सो अपेरेंटली यूके'स किंग चार्ल्स वॉज ग्रीटिंग पीपल ड्यूरिंग अ पब्लिक विजिट व्हेन अ सीगल डिसाइडेड टू कंट्रीब्यूट इमोशनली फ्रॉम द स्काई। यू नो व्हाट आई मीन? Yup, bird poop landed on the back of his jacket. Honestly, the seagull woke up today and chose chaos. Lekin true royal style mein King Charles laughed it off and reportedly said, "At least it didn't land on my head." Well, sir, you handled it better than most of us handle one passive-aggressive office meeting. And of course, a lot of other things in your life. वैसे ये story proof है that no matter who you are, king हो, celebrity हो, आम आदमी हो या immigrant हो, life will eventually test your patience in public sometimes. Sometimes in the form of birds. And on that note, thank you so much for spending time with me today on Mirchi Mornings. You made the day feel happier. Abhi filhal main to apni coffee peene ja rahi hu. You have a great day and a great weekend. Milungi tumse same time, same place, same frequency, lekin kal nahi, Monday ko. Tab tak ke liye Prisla ki taraf se tada bye bye. You can follow me Instagram or X par, mera handle name hai Mirchi Pris, and WhatsApp par mera number hai 9033 Mirchi. That's 9033647244. Right now, stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद जारू ओनली ऑन

भाई हम लोग कसम तो ऐसे खाते हैं जैसे चने मूंगफलियां हो हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। माँ कसम, मम्मी कसम, और अगर झूठ बोल रहे हैं तो तेरी कसम, सामने वाले को ही खतरे में डाल देते हैं। तो देखो ऐसा है, जितनी कसम खानी है खाओ, कौन सा पैसे लग रहे हैं। तो वैसे कसम से ये जो गाना सुना था ये भी बहुत बढ़िया था, और ये जो गाना सुनने वाले हैं ये भी बहुत बढ़िया है। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, क्या बना? मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो मनोज जी, से बात कर सकता हूँ मैं?
4: हाँ जी, बोल रहा हूँ मनोज।
3: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
4: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
3: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
4: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
3: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
4: बोलो।
3: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
4: कौन सा?
3: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
4: अच्छा अच्छा।
3: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
4: कच्चे तेल से गाड़ी चलाऊं?
3: वो पक्का हो जाएगा, मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
4: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
3: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
4: कुकर तो है।
3: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
4: अच्छा।
3: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
4: सोडा,
3: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है, वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
4: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
3: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
4: मतलब उसको पकाऊं?
3: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
4: ऐसा कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा, रिस्क कौन लेगा, ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
3: या एक काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना, पकाना नहीं है।
4: नहीं नहीं कोई, मैं सर्विस में लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
3: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
4: चल जाएगी?
3: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
4: अबे कौन बोल रहा है तू?
3: मनोज, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
4: यार यार। ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का?
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
0: Pirani Jeans with Charu. Only.

उस्ताद गाना मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। अगर आपने संजू मूवी देखी है तो आपको पता है कि ये वाला गाना अमर प्रेम का उस्ताद गाना क्यों है। तो ऐसा सुनने में आता है कि आनंद बख्शी साहब ने गाना लिखा था एज एन एक्सप्रेशन उनके क्रिटिसिज्म को लेकर जो उनको मिलता था। भाई उस टाइम पे बहुत सारे जो लिरिसिस्ट थे, मोस्ट ऑफ द लिरिसिस्ट वो शायर थे, तो आनंद बख्शी साहब शायर नहीं थे, वो बस फिल्मी गाने लिखते थे। तो उनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता था कि जो ये लिखते हैं उसमें इतनी डेप्थ नहीं होती है, ये शायरी नहीं होती है, इनकी तो तुकबंदी है, ये राइमिंग कर देते हैं। तो इस तरह के क्रिटिसिज्म का ये सॉर्ट ऑफ जवाब था कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और मैं ये कहती हूँ कि बाकी के लिरिसिस्ट यस जो शायर थे उनका जवाब नहीं था, लेकिन बख्शी साहब भी लाजवाब थे। बख्शी साहब इन द हाउस, उनका एक और गाना सुनेंगे राइट हियर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: अमोरे मियो दोवे साय तू। ए, क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू।

एक टाइम होता था जब ये सारे मौसम प्रॉपर होते थे, पतझड़ सावन बसंत बहार। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अभी क्या हो गया है, हर कोई मौसम दूसरे मौसम में घुसा हुआ है। ये सावन बरसात तो कहीं भी घुस जाती है, किसी भी मौसम में बरसात हो जाती है, पतझड़ में बारिश हो रही है, गर्मी में बारिश हो रही है, कभी सर्दियों में गर्मी लगने लग जाती है, कभी गर्मियों में बरसात हो जाए तो ठंडी लगने लग जाती है। तो ऐसा सुनने पढ़ने में आता रहता है कि क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो अपना काम कर रही है धीरे धीरे, और हम बहुत तेज तेज अपना काम कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, अर्थ का अनर्थ, पॉल्यूशन, पेड़ों की कटाई, डिफॉरेस्टेशन, धरती का बैलेंस हम बिगाड़ रहे हैं। तो जब हम बेईमानी कर रहे हैं तो मौसम भी तो बेवफाई कर सकता है ना। इसी ज्ञान के साथ वी टेक अ ब्रेक। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1965 की सुपरहिट फिल्म जब जब फूल खिलेगा ये गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और इस फिल्म के सुपरहिट होने की मेन वजह थी इसका क्लाइमैक्स। तो इस फिल्म में शशि कपूर जी कश्मीर के एक बोटमैन बनते हैं और नंदा जी एक शहर की लड़की होती हैं रईस, जो कश्मीर घूमने आती हैं। दोनों में प्यार होता है, फिर बहुत सारी कन्फ्यूजन होती हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, एंड इवेंचुअली हीरोइन अपनी दौलत रुतबा ये सब फलाना ढिमका छोड़ के हीरो के साथ चले जाती है। सो डायरेक्टर सूरज प्रकाश ने पहले ऐसा क्लाइमेक्स नहीं सोचा था। पहले ऐसा कुछ होता है कि शशि कपूर जी जब शहर आते हैं तो गुंडों को पीट पाट के वापस चले जाते हैं। बट देन डायरेक्टर साहब ने एक अमेरिकन फिल्म देखी, लव इन द आफ्टरनून, 1957 की ये फिल्म थी, जिसमें ऐसा कुछ क्लाइमेक्स होता है कि हीरो ट्रेन में जा रहा होता है, हीरोइन उसके पीछे पीछे प्लेटफॉर्म पे भाग रही होती है और हीरो उसको ट्रेन में खींच लेता है। बस यहीं से इस फिल्म का क्लाइमेक्स आ गया। इसी तरह का क्लाइमेक्स है इसका। When you watch the film, this climax is so so satisfying। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: NGO, NGO, color house, NGO. उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
1: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या
0: उड़ बैठी पनवड़िया तो कन्या अरे बीड़ा के सब रसल

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

आपको पता है नीतू सिंह जब ऋषि कपूर से पहली बार मिली थी तो ऋषि कपूर उनको बहुत अनोइंग लगे थे। पिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बहुत शरारती थे, फ्लैम्बॉयंट थे, उछलते कूदते रहते थे, एंथू कटलेट सीरियस नहीं लगते थे, और ये सॉर्टेड सुलझी हुई थोड़ी शांत स्वभाव की। पर धीरे धीरे इनमें दोस्ती होनी शुरू हुई। इनफैक्ट जब ये दोस्त थे तब ऋषि कपूर नीतू सिंह से टिप्स भी मांगते थे, सजेशंस मांगते थे कि वो उनकी गर्लफ्रेंड को कैसे मनाए। वो गर्लफ्रेंड तो नहीं मानी, वो तो चली गई। इनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पर मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: हेलो
2: सुमन जी, गुड इवनिंग. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ. आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेंट करी है.
1: हाँ जी, हाँ जी.
2: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
1: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
2: होल्ड कर रहा हूँ.
1: हाँ जी. हेलो,
2: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
1: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है.
2: कनेक्ट नहीं हो पाता है. सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
1: सुमन शर्मा. दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाते हैं, तो स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें.
2: वो सारी चीजें हो जाएगी. आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
1: है 3rd K 5/14A फर्स्ट फ्लोर नगर. तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा.
2: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें. सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको.
1: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
2: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म.
1: मेरा सनसाइन कैंसिल है. प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
2: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं. ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
1: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है.
2: मैडम ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए.
1: बी पॉजिटिव. दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं.
2: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
1: राहुल शर्मा. और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो.
2: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
1: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए. डिटेल
2: सुमन जी, आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
1: क्या
2: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है. आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
3: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है. दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया. रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है. आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
1: नहीं.
2: दोबारा कॉल करेंगे. आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं. मैं अभी आपको कॉल बैक.
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट. ये पटाक.
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर.

मैं ना कहीं पे पढ़ रही थी कि बॉबी फिल्म के ये दो क्लाइमेक्स शूट किए गए थे, एक सैड वन एक हैप्पी वन। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और राज कपूर साहब अक्सर ऐसा करते थे कि फिल्मों के दो क्लाइमेक्स शूट कर लेते थे और फिर अपने दोस्तों भाई बंधुओं को फिल्म दिखाते थे, जो पब्लिक की राय होती थी कि कौन सा क्लाइमेक्स ज्यादा अच्छा लग रहा है वो क्लाइमेक्स रखते थे। एंड इसीलिए बॉबी फिल्म में हैप्पी वाला एंडिंग रखा गया था। वैसे मुझे समझ नहीं आता लव स्टोरीज में लवर्स को मारना क्यों है यार। पहले के जमाने में होता था लैला मजनू हीर रांझा, मारना क्यों है, सैड क्यों करना है पब्लिक को। पर लेकिन अगर आप सोचें, भारत देश में ही देखें, कई स्टेट्स में हम ऑनर किलिंग का नाम सुनते हैं कि दो लवर्स अगर सेम गोत्र सेम कास्ट सेम रिलीजन के नहीं है तो उनको मार दिया जाता है। दैट इज द सैड ट्रूथ। खैर, लेट्स होप रियलिटी में भी और फिल्मों में भी हमें हैप्पी एंडिंग्स मिले। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं।

पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर म्यूजिक मस्ती एंड मच मोर सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना

ग्रोइंग अप ईयर्स में जब हम रीमिक्स सॉन्ग सुनते थे तो हमको लगता था ना कि ये ओरिजिनल ही है गाना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, मतलब ऐसा लगता था ओरिजिनल गाना है, उसमें इस तरह की बीट्स डाल दी गई हैं। फिर बाद में जाके पता चलता था कि ये तो कोई पुराना गाना था भाई, जैसे कि एक वो आया था, कलियों का चमन तब बनता है, थोड़ा रेशम लगता है, थोड़ा शीशा लगता है। फिर आई थिंक एक और, हाउ टू फॉरगेट दिस वन, कांटा लगा। So, कांटा लगा इज ओरिजिनली फ्रॉम 1972 की फिल्म समाधि। इस गाने को कंपोज किया था आरडी बर्मन ने, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ, लता मंगेशकर की आवाज में। सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: ओए होए होए होए, क्या गाना है ये खुशबू फिल्म का।
1: ऐसे सुनो तो लगता है कि थोड़ा सैड गाना है, लेकिन ध्यान से सुनो तो लगता है कि कितना फिलोसॉफिकल है, कितना डीप है, इतना डीप कि डुबकी लगा के समझना पड़ता है। गुलजार साहब के लिरिक्स हैं भाई, सरफेस पे सतह पे थोड़ी ना समझ में आ जाएंगे, गहरी डुबकी लगानी पड़ेगी। क्या लिखते हैं गुलजार साहब, पानियों में बह रहे हैं कई किनारे टूटे हुए, रास्तों में मिल गए हैं सभी सहारे छूटे हुए, कोई सहारा मझधार में मिले वो अपना सहारा है, ओ माझी रे अपना किनारा नदिया की धारा है। आरडी बर्मन की ये कॉम्पोजिशन थी, किशोर कुमार ने गाना गाया था, और फिलोसॉफिकल मूड से मूड थोड़ा मस्त करते हैं ये अगला गाना सुन के। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

कुछ ना कहेंगे

0: कसम,
1: मोहब्बत की कसम,
0: मोहब्बत की कसम,
1: मोहब्बत की कसम।
2: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली।

1984 की फिल्म सनी से ये गजल हमने सुनी। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। और ये फिल्म जब आई थी ना उस दौरान 1984-85 में, इसी सब्जेक्ट पे दो और फिल्में आई थी जिसमें अगेन स्टार सन्स थे। अच्छा, सनी फिल्म में सनी देओल थे, धर्मेंद्र के बेटे। दूसरी जो फिल्म थी जमीन आसमान, उसमें थे संजय दत्त, सुनील दत्त साहब के बेटे। और एक और फिल्म जो आई थी उसका नाम नहीं मुझे याद आ रहा, उसमें थे सुनील आनंद, देव आनंद के बेटे। लेकिन ये जो बाकी की दो फिल्में थी वो इतनी नहीं चली। इनके कंपैरिजन में सनी फिल्म वॉज अ हिट। वैसे ये सनी फिल्म डायरेक्टर राज खोसला साहब की एज डायरेक्टर लास्ट फिल्म थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu इस नाम से। और अभी सुन लेते हैं एक और ब्यूटीफुल गजल राइट हियर ऑन मिर्ची।

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Na wird bala burga. Milci, burga.
1: Hallo? Hallo?
2: Sir, very good evening, man. Bank to photo.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया?
2: सर I'm so sorry, पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
2: सर आपने उसमें से अभी तो कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो.
2: अब तो फंस गए देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: पागल के दिमाग खराब है क्या? जरा पैसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे.
2: अब तो फंस गए सर.
1: हेलो
3: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ सर. आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
3: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
3: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर. मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
4: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: आपको पता है अर्ली 70s में एक फेज ऐसा था जब आरडी बर्मन वाज गोइंग थ्रू डीप डिप्रेशन. मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ. और वो लोग जो उनको इस सिचुएशन से बाहर लेकर आए, उनमें से एक थे देवानंद साहब. देवानंद साहब ने उनको बहुत मोटिवेट किया, उनके साथ बहुत टाइम स्पेंड किया. देवानंद साहब की हीरा पन्ना फिल्म जो बन रही थी उसमें म्यूजिक देने के लिए उनको कन्विंस किया. एंड इनफैक्ट वो एक सिटिंग में उनके साथ 3-4 घंटे बैठे और तब आरडी बर्मन ने इस फिल्म की 3-4 ब्यूटीफुल ट्यून्स बनाई. सो ऐसी ही एक ट्यून, ऐसा ही एक गाना सुनते हैं राइट हियर पुरानी जीन्स पर. मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची.
1: बहुत दूर मुझे चले जाना

0: यादों में,
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
3: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

1983 की फिल्म मासूम, जिसमें उर्मिला मातोंडकर ने एज चाइल्ड एक्टर काम किया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई उनके साथ जुगल हंसराज भी थे, एंड इस फिल्म में तो वो दोनों छोटे छोटे थे, भाई बहन बने थे, पर जब ये बड़े हो गए थे तो 1994 की एक फिल्म में एज लीड एक्टर्स एज रोमांटिक पेयर इन्होंने काम किया था। दैट फिल्म वॉज आ गले लग जा। एंड मासूम फिल्म में शबाना आजमी उर्मिला मातोंडकर की मॉम प्ले करती हैं। एंड एक और फिल्म थी 2003 की तहजीब, जिसमें भी ये दोनों मदर डॉटर प्ले करती, एंड इन रियल लाइफ आल्सो ये दोनों बहुत क्लोज हैं। पता नहीं कुछ टाइम पहले आपने शबाना आजमी के बर्थडे के फोटोज वीडियोस सोशल मीडिया पे जो शेयर किए गए थे, उसमें उर्मिला मातोंडकर को नोटिस किया था कि नहीं किया था। दीज टू हैव बीन क्लोज सिंस मासूम डेज। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

1977 की फिल्म आनंद आश्रम। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इनमें कई स्टार्स थे इंक्लूडिंग मौसमी चैटर्जी एंड राकेश रोशन। और ऐसा सुनने में आता है कि मौसमी चैटर्जी चाहती थी कि उनके ऑपोजिट विनोद मेहरा को साइन किया जाए, जो पहले शायद बात चल रही थी, लेकिन उनकी जगह जब राकेश रोशन को साइन कर लिया गया तो वो थोड़ी सी डिसअपॉइंट हो गई और उनका मन नहीं लग रहा था फिल्म में। वो फिल्म के सेट्स पर अक्सर लेट आती थी, डेट्स देने में दिक्कत करती थी। एक बार एक इंटरव्यू में शक्ति सामंता जिन्होंने फिल्म बनाई है, उन्होंने भी मेंशन किया था कि उन्होंने मौसमी चैटर्जी को ऐसी स्ट्रिक्ट वार्निंग दी थी कि अगर वो फिल्म के सेट पे लेट आती रही तो फिर उनको फिल्म से हटा दिया जाएगा। उसके बाद वो पंक्चुअल हो गई। कई बार हो जाता है लाइफ में, जब हमारे मन की नहीं होती है तो हमारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। चलिए अभी यहाँ पर बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा रोमांटिक गाना सुनते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन

0: कसम से 5th of June का इतनी बेसब्री से इंतजार नहीं किया था कभी जिंदगी में।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पिटी उंडन हूँ आप, और कुछ ऐसा हो रहा है जिसने मेरे अंदर की एक्साइटमेंट बढ़ा दी है। सो बेसिकली बंदर इज एन अपकमिंग फिल्म जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अनुराग कश्यप, और इसमें कॉम्बो होगा बॉबी देओल का। सो ये पहली बार हो रहा है कि अनुराग कश्यप और बॉबी देओल कोलैब कर रहे हैं फॉर एनी फिल्म। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस मूवी का टीजर धूम मचा चुका है, एंड नाउ द ट्रेलर इज आउट, एंड भाई साहब वॉल्ड एंड एंगेजिंग एंड अनकन्वेंशनल अप्रोच द मूवी हैज। फिल्म में बॉबी देओल का कैरेक्टर एक फेडिंग स्टार है हु इज ट्रैप्ड इन दिस ट्विस्टेड क्राइम सागा। बाकी बॉबी के अलावा मूवी में सानिया मल्होत्रा, सपना पब्बी, सबा आजाद, इंद्रजीत सुकुमारन, जितेंद्र जोशी, राजबी शेट्टी और नागेश भोसले भी नजर आने वाले हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात, इस फिल्म को लिखा है सुदीप शर्मा और अभिषेक बैनर्जी ने साथ मिलकर। एंड माइंड यू, इनके पहले के काम याद दिला दूं आपको,

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Burka, burka. La virtua la burka. Mirci, burka.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है इसमें।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st फ्लोर। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला
3: है। वो ठीक हो जाएगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, 2 दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: तो मैं आपको, अरे मैडम,
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल थोड़ी
3: जी। आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हम? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम, आप मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर मेरा मतलब है, अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आपका वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: भाई इनकी फिल्मोग्राफी की अलग से स्टडी होनी चाहिए।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड हो आप एंड आपको जस्सी जैसी कोई नहीं तो याद होगा। यस यू गेस इट राइट, मैं बात कर रही हूँ अबाउट एक्टर मोना सिंह। भाई साहब जब से ये बंदी इंडस्ट्री में आई है आइदर थ्रू सीरियल्स या फिर इन फिल्म्स, उन्होंने अपनी अलग ही लेगेसी खड़ी कर दी है। क्योंकि हम इस इंडस्ट्री के बारे में जानते हैं यार, यहाँ पे किस तरीके से फीमेल एक्टर्स को देखा जाता है, उनका पोर्ट्रेयल होता है, बट मोना सिंह नेवर लिमिटेड हरसेल्फ अराउंड दिस कॉन्सेप्ट। अब उनके जस्सी जैसी कोई नहीं वाले कैरेक्टर को ही देख लीजिए, मतलब कितना लंबा चला वो सीरियल और उस पूरे ड्यूरेशन के लिए उन्होंने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कर डाला था, नॉट जस्ट ऑन द रियल लाइफ बट इन रियल लाइफ एज वेल। फिर उनकी रिसेंटली आई फिल्म हैप्पी पटेल की अगर बात करें, उसमें एकदम से डॉन बन गई हैं और वो भी अतरंगी अंदाज में, जिस तरीके से वो सामने वाले को परेशान करती हैं, उसको मार काट करती हैं, इज समथिंग अल्टीमेट। और अब उनकी अपकमिंग सीरीज पान पर्दा एंड जर्दा इज इन चर्चा। सो बेसिकली इट इज एन अपकमिंग क्राइम ड्रामा जिसमें मोना सिंह का एक बोल्ड एंड कमांडिंग अवतार नजर आने वाला है। फिलहाल द सीरीज इज अंडर पोस्ट प्रोडक्शन, बट जैसे ही बाकी की डेट्स मिलेंगी आपको जरूर बताऊंगी। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून इन हो आप, एंड अगर आप मुझे रोज सुनते हैं देन यू नो इट्स टाइम टू फाइंड द मिर्ची फिल्म जी। एंड द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टाग्राम पे जाके डीएम करना होता है अपना नंबर, फिर मैं आपको कॉल करती हूँ एंड देन आई स्टार्ट विद द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। अगर आपने उसका सही जवाब दिया तो उसके बाद देयर कम्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो मुझे बहुत सारे लोग अपना नंबर भेजते हैं। आज मैंने कॉल किया है रायपुर छत्तीसगढ़ के हर्ष जी को। तो सर तैयार है आप?
3: ओके लेट्स गो।
0: दैट्स द स्पिरिट। ओके, बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट किसको कहते हैं?
3: मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान।
0: आमिर खान की फिल्म जिसमें वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट बने थे,
3: थ्री इडियट्स
0: में फोटोग्राफी का पैशन किस हीरो को होता है? ग्रेट। आर माधवन किस फिल्म में इंटेलिजेंस ऑफिसर बने हैं?
3: धुरंधर।
0: क्या बात, धुरंधर में जस्सी का रोल किसने प्ले किया है?
3: हीरो है अपने रणवीर सिंह।
0: ग्रेट। रणवीर सिंह की फिल्म जिसमें प्रियंका चोपड़ा उनकी बहन बनी थी
3: दिल धड़कने दो।
0: ऑसम। दिल धड़कने दो का कौन सा एक्टर वेलकम मूवी में भी है?
3: अनिल कपूर।
0: ग्रेट। अनिल कपूर किस फिल्म में घड़ी पहन के गायब हो जाते हैं?
3: मिस्टर इंडिया।
0: मिस्टर इंडिया की कौन सी एक्ट्रेस फिल्म मॉम के लीड रोल में है?
3: श्रीदेवी।
0: ऑसम। श्रीदेवी की किस बेटी का डेब्यू फिल्म धड़क है?
3: जानवी कपूर।
0: ग्रेट। जानवी कपूर किस फिल्म में एयरफोर्स पायलट बनी है?
3: I guess ये वाला मुझे पता नहीं है।
0: Never mind, but it was lovely having this conversation and playing the game. तो काफी प्रो लग रहे हैं मिर्ची फिल्म जी, आपको ये टैग मिलना

0: जिंदगी को अपने साथ इतने गेम्स खेलने का मौका दिया तो जरा मुझे भी इस लिस्ट में ऐड कर ही लीजिए।
1: श्रुति,
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप एंड लाइक एवरी डे मैं आज भी ढूंढ रही हूँ मिर्ची फिल्म जी। जहाँ द ड्रिल इज कि आप मेरे इंस्टा डीएम में जाके अपना नंबर भेजते हैं, मैं आपको कॉल करती हूँ एंड वी स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। अगर उसका सही जवाब देते हैं आप, देन कम्स अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस। तो ये गेम आज मैंने शुरू किया हर्ष जी के साथ, हु इज फ्रॉम रायपुर छत्तीसगढ़, बट वो एक पॉइंट पे अटक गए थे और अब उस पॉइंट से आगे मेरे साथ गेम खेलने के लिए है नन अदर देन कामिनी फ्रॉम चंडीगढ़। जानवी कपूर किस फिल्म में एक एयरफोर्स पायलट बनती हैं?
3: गुंजन सक्सेना।
0: Awesome. गुंजन सक्सेना में जानवी कपूर के पापा कौन हैं?
3: पंकज त्रिपाठी। हां जी।
0: Awesome. पंकज त्रिपाठी किस फिल्म में बुचर बने हैं, कसाई?
3: ओके ओके, गैंग ऑफ वसीपुर।
0: Awesome. गैंग ऑफ वसीपुर में बाप का, दादा का, सबका बदला कौन लेने वाला होता है?
3: नवाजुद्दीन सिद्दीकी।
0: नवाजुद्दीन सिद्दीकी किस फिल्म में पाकिस्तानी रिपोर्टर बने हैं?
3: मुन्नी वाली कौन सी मूवी थी?
0: हाँ हाँ बिल्कुल,
3: बजरंगी भाईजान।
0: Awesome. बजरंगी भाईजान की फीमेल लीड कौन थी?
3: वो करीना कपूर थी।
0: करीना का मैं अपनी फेवरेट हूँ डायलॉग किस फिल्म में है?
3: जब वी मेट। जब वी मेट।
0: जब वी मेट के किस एक्टर की डेब्यू फिल्म इश्क विश्क थी?
3: शाहिद कपूर।
0: शाहिद कपूर की फिल्म जिसमें वो अल्कोहलिक डॉक्टर बने हैं?
3: ओके, कबीर सिंह।
0: कबीर सिंह में प्रीति का रोल किसने प्ले किया है?
3: क्यारा आडवाणी।
0: Awesome. मजे ही आ गए आप लोगों के साथ गेम खेल के, तो आपको भी मैं ये मिर्ची फिल्मची का टैग जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर द लवली एंटरटेनमेंट। तो चलिए आज की हमारी दूसरी मिर्ची फिल्मची बनी है मिस कामिनी।
1: मिर्ची फिल्मची।
0: तो भाई आज अगर आपको कॉल नहीं आ पाया देन वरी नॉट, क्योंकि कल वापस से इस गेम का सिलसिला जारी रहेगा। मिर्ची पे मैं हूँ श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yapala. Burga, burga. La virpala burga.
1: Mirci, burga. हेलो
2: हेलो मनोज जी से बात कर सकता हूँ मैं?
1: हाँ जी बोल रहा हूँ मनोज।
2: हाँ मनोज जी, मैं यादवार बोल रहा हूँ। ऑयल से ये पेट्रोल की प्रॉब्लम आपको भी हो रही है क्या?
1: सर पेट्रोल की प्रॉब्लम तो हो ही रही है पूरी दिल्ली में। मैं तो भाई सुबह से 3 जगह जा चुका हूँ, मुझे तो पेट्रोल मिला नहीं।
2: अभी 1 महीने तक आपको पेट्रोल नहीं मिल पाएगा, वो तो मेरे जान पहचान। ये 1 महीने तक कम से कम।
1: ये बताओ मतलब प्रॉब्लम क्या है?
2: पीछे से पेट्रोल आ नहीं रहा है, पेट्रोल है नहीं। अच्छा विनोद जी, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, ये बात आप अपने तक ही रखना।
1: हाँ बोलो।
2: हमारे पास ना थोड़ा कच्चा तेल पड़ा हुआ है।
1: कौन सा?
2: कच्चा तेल पड़ा हुआ है, कच्चे तेल के ड्रम पड़े हुए हैं।
1: कच्चा? अच्छा।
2: हाँ तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको भिजवा देता हूँ, बल्कि मैं तो कह रहा हूँ आप यहाँ से उठवा लो, सही रेट पे आपको दिलवा लेंगे। कच्चे तेल से आप गाड़ी चला लो, ठीक है?
1: कच्चे तेल से गाड़ी चलाओ
2: वो पक्का हो जाएगा। मैं आपको विधि बता दूंगा उसकी बनाने की।
1: ओके, मतलब ऐसे ही डाल दूं?
2: नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं डालना है यार, उसमें काम करना। कुकर है आपके घर?
1: कुकर तो है।
2: 4 लीटर पेट्रोल आप अपने कुकर में डाल दो। 4? हाँ कुकर में, जिसमें खाना बनाती है ना भाभी जी।
1: अच्छा।
2: 4 लीटर में आप मेरे ख्याल से एक बोतल जो सोडे की आती है ना, सोडा
1: सोडा,
2: हाँ खाने वाला सोडा, नहीं नहीं नहीं लिक्विड वाला सोडा भी आता है वो डाल देना। खाने वाला डालो, लहसुन डाल देना उसमें थोड़ा सा।
1: लहसुन यार पेट्रोल बना रहा है या वो खाना बना रहा है?
2: 3 सीटी के बाद आपका नॉर्मल पेट्रोल तैयार हो जाएगा।
1: मतलब उसको पकाऊं?
2: हाँ तो कच्चा है यार, पकाओगे नहीं उसको आप। 3 सिटी पे आपको नॉर्मल पेट्रोल मिलेगा, 5 सिटी पे स्पीड मिल जाएगा, 10 सिटी तक इंतजार करोगे तो हाई ऑक्टेन मिल जाएगा आपको, इससे ज्यादा और क्या करें यार।
1: ऐसे कोई बनता है पेट्रोल? पेट्रोल की तो वो ये रिफाइनरी होती है पूरी यार, तो कौन लेगा रिस्क, कौन लेगा ये घर में पकाएगा पेट्रोल?
2: यह काम करो, अगर कच्चा ही रखना, कच्चा रखना है, पकाना नहीं है।
1: नहीं नहीं कोई मैं सर्विस नहीं लेना यार, पेट्रोल दिलवाओ मुझे।
2: नहीं पेट्रोल मैं आपको कच्चा दिलवा रहा हूँ, लेकिन वो उससे गाड़ी तो चल जाएगी आपकी कच्चे तेल से।
1: चल जाएगी?
2: हाँ चल जाएगी, लेकिन सिर्फ कच्ची सड़क पे चलेगी। कच्ची सड़क पे चलेगी, चलवानी है।
1: अबे कौन बोल रहा तू?
2: मनोज मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, और कुसुम ने मुझे तुम्हारा नंबर दिया था, उन्होंने बताया था तुम्हारी गाड़ी में बिल्कुल पेट्रोल नहीं है। घबराने की बात नहीं है, 2-3 दिन में मिल जाएगा यार, टेंशन मत लो। तुम रेडियो मिर्ची पे हो, मजाक कर रहा था।
1: यार। ये भी बता था कि मुर्गा कच्चा है पक्का।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का गो टू इंस्पिरेशन है ये
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ
0: बाबू मोशाय, मैं साउथ इंडियन फिल्मों की बात कर रही हूँ क्योंकि टाइम एंड अगेन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वहाँ से इंस्पिरेशन तो ले ही लेती है, तभी तो इतने सारे हिंदी रीमेक्स हैं ऑफ साउथ फिल्म्स। और आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ इन्हीं फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट स्वदेश, नंबर दो पे हमने हेरा फेरी को डिस्कस किया, नंबर तीन पे अजब प्रेम की गजब कहानी, और अब बारी है नंबर चार पे फिल्म गुमराह को डिस्कस करने की। वेल, ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2023, डायरेक्टेड बाय वर्धन केतकर, जो 2019 में आए तमिल फिल्म थाडम के ऊपर बेस्ड है। ये एक क्लेवर ट्विन मिस्ट्री है जिसमें ग्रिपिंग इन्वेस्टिगेशन को दिखाया गया है। वैसे गुमराह जो है वो एक सस्पेंसफुल फॉर्मूला को कोर्टरूम ड्रामा के साथ मिक्स करके बॉलीवुड फैंस को ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के साथ परोसी गई थी, which definitely keeps you guessing about the movie till the end. चलिए लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर पांच पे बात करते हैं अबाउट द फिल्म बिल्लू, जो रिलीज हुई थी इन द ईयर 2009। और ये फिल्म 2007 में आई मलयालम फिल्म कथापरयम्बोल का हिंदी रीमेक है। ऑल्दो अगर आप मलयालम वर्जन देखेंगे तो आपको शायद बिल्लू समझ में ना आए, लेकिन फिल्म की वार्म स्टोरी टेलिंग ने मेरा दिल तो पर्सनली जीत लिया था। वेल, मेरी इस लिस्ट में अगर आप कोई ऐसी ही फिल्म को ऐड करना चाहें देन फील फ्री टू डू दैट। मिर्ची श्रुति के नाम से हम फेसबुक या इंस्टा पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड इन द मीन टाइम स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Ay, ahora va. Ahora va. It's Gunny.
1: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: भैया अभी दूसरी फिल्म आई नहीं, लेकिन इस फ्रेंचाइजी की तीसरी फिल्म की अनाउंसमेंट जरूर आ चुकी है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया की मच लव्ड हॉरर फैंटेसी फ्रेंचाइजी तुम्बाड, जिसका पार्ट टू इस साल तो नहीं अगले साल दिसंबर तक आएगा, जिसके बारे में कुछ दिनों पहले रिवील किया गया दैट पार्ट टू में आलिया भट्ट का एक एक्सटेंडेड कैमियो होने वाला है। बट नाउ रिपोर्ट्स हैव इट कि ये एक्सटेंडेड कैमियो जो है वो कॉन्टेक्स्ट सेट करेगा ताकि तुम्बाड थ्री में आलिया भट्ट को फिल्म की लीड एक्ट्रेस का दर्जा मिल सके। भाई एक तो फिल्म के डायरेक्टर सोहम सा, जो इस फिल्म के लीड एक्टर भी हैं, उनके आर्ट का, उनके क्राफ्ट का कोई जवाब नहीं, और अब इसमें आलिया भट्ट का एडिशन। कसम से अगर आपने तुम्बाड नहीं देखी देन हॉरर जॉनरा की एक बहुत अल्टीमेट लेवल की फिल्म आप मिस कर रहे हैं, जरूर से देखिएगा। एंड आई एम श्योर उसके बाद आपको तुम्बाड टू और थ्री का बेसब्री से इंतजार होगा, जस्ट लाइक मी। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ। स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: शाम शानदार लेट्स डू नॉट डंकी हैव अ फंकी टाइम
2: या यू ऑलरेडी नो व्हाट इट इज ओके.

0: सारा मेरा उप्स।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉटंकी हैव अ फंकी टाइम।
2: फ्राइडे का मतलब है फिल्मी वीकेंड का ट्रेलर और मिर्ची सिद्दी के साथ मस्ती का सुपरहिट पिक्चर। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी। और फ्राइडे इवनिंग का फील ही ना अलग होता है, मतलब बॉस के ईमेल्स भी ना इतने हैवी नहीं लगते और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमता है, आज रात क्या देखे। और बॉलीवुड का असली मजा ही इस वीकेंड पे है। OTT पे फ्रेश ड्रॉप्स, थिएटर में बिग क्लैशेस और बॉक्स ऑफिस पे नए रिकॉर्ड्स, सब कुछ हैपनिंग है दोस्तों। और आपकी फिल्मी दोस्त मिर्ची सिद्दी लेकर आई है आज शाम का परफेक्ट एंटरटेनमेंट गाइड। तो मुझे बताइए कि फ्राइडे नाइट में आपका प्लान क्या है, थिएटर या टिकट या OTT का रिमोट। DM मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और आपके लिए स्पेशल फ्राइडे पिक्स आने वाले हैं जल्द after this song right here on Mirchi. It's hot.

0: Milci. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbala. Murga, murga. La virtua la murga.
1: Milci, murga. Hello? Hello?
2: Sir, very good evening, man. Bank support.
1: हाँ बोलिए
2: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
1: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
2: बात है सर, आप तो सर पूरा बताइए
1: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया
2: सर? आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
1: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
2: आई एम सो सॉरी सर, ऐसी कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
1: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो
2: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
1: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
2: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
1: पागल पागल है,
2: अब तो देने पड़ेंगे सर.
1: हेलो
2: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
1: कौन बोल रहा है? विपिन?
2: नहीं सर, तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
1: अब
2: तो फंस गए सर.
1: हेलो
2: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया है.
1: उसके पैसे को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
2: नहीं सर वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
1: मतलब ये पक्की बात है आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
2: जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

काम भी हो और घर का कंफर्ट भी हो, क्या ये ड्रीम जॉब जैसी बात नहीं लगती? श्याम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि एंड आई एम ब्रिंगिंग यू अ लिटिल होप एंड अ होल लॉट ऑफ गुड वाइब्स। जी हाँ, जिंदगी काफी बदल चुकी है, अब काम सिर्फ ऑफिस तक सीमित नहीं रहा। इमेजिन एक ऐसा करियर जहाँ आप हेल्थ केयर वर्ल्ड का पार्ट भी हो और फिर भी काम भी अपने घर के कंफर्ट से कर पा रहे हो। तो बस कुछ महीनों की ट्रेनिंग और आप बन सकते हो मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग स्पेशलिस्ट। AIMS एजुकेशन का प्रोग्राम जो है वो फुल्ली ऑनलाइन है और अब आउट ऑफ स्टेट स्टूडेंट्स भी एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आप भी फ्लेक्सिबल, रिमोट और ग्रोइंग करियर चाहते हो तो आज ही कॉल कीजिए AIMS एजुकेशन को एट 908-222-0002 या फिर विजिट कीजिए AIMSeducation.edu, क्योंकि हर बड़ा सपना एक स्मॉल स्टेप से शुरू होता है। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है धूम थ्री के मलंग गाने से। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीन पर कैटरीना कैफ का एरियल एक्ट यानी जितने भी सर्कस स्टाइल परफॉर्मेंसेस थे, फ्लिप्स थे, बैलेंस थे, ग्रेस था, सब कुछ एकदम परफेक्ट। लेकिन पर्दे के पीछे इस गाने के लिए ना एक फुल ऑन ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रिक्वायर्ड था, क्योंकि कैटरीना ने इस गाने के लिए प्रोफेशनल एक्रोबैटिक ट्रेनिंग ली थी, बॉडी कंडीशनिंग की थी और मंथ्स तक रिहर्सल किए थे, क्योंकि ये कोई रेगुलर बॉलीवुड डांस नहीं था। इसमें स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी और टाइमिंग सब कुछ एक साथ चाहिए था। और शूट के टाइम पर भी ना सेफ्टी और प्रिसीजन का पूरा ध्यान रखा गया था। तो सोचिए दोस्तों, जो परफॉर्मेंस हम बस 3 मिनट के लिए पर्दे पर देखते हैं

चलिए सुनते हैं धूम थ्री का मलंग गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो कि कौन से गाने के पर्दे के पीछे के किस्से आपको सुनने हैं। टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना ख़त्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज़ उसके पीछे सबसे ज़्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे ज़रूर बताना विच इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

माइंडेड अरे मेरी जैसे डांस किसको आता है कोरियोग्राफर को मैं ही सिखा दूं।

0: Mirci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Yabala. Burga, burga. La virbala, burga. Mirci, burga.
2: Hello.
3: Suman ji, good evening. इंटरनेट लिमिटेड से बोल रहा हूँ, आपका नेट काम नहीं कर रहा था, आपने कंप्लेन करी है?
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: आप अभी इंटरनेट के पास हैं, कंप्यूटर के पास हैं?
2: एक सेकंड, आप प्लीज होल्ड करेंगे? मैं
3: होल्ड कर रहा हूँ।
2: हाँ जी, हेलो।
3: क्या आता है जब इंटरनेट ओपन करते हो आप?
2: इंटरनेट कनेक्ट नहीं हो पाता है।
3: कनेक्ट नहीं हो पाता है? सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका पूरा नाम जान सकता हूँ?
2: सुमन शर्मा। दिन में तो जब काम होता है तो चलता ही नहीं है, बस इसमें गूगल खुल जाता है, स्पीड इतनी स्लो हो जाती है।
3: वो सारी चीजें हो जाएगी। आप सुमन जी, सिक्योरिटी के कारण आपका एड्रेस जान सकता हूँ? फुल एड्रेस
2: है 3rd K 35/14A 1st floor। तो इंटरनेट चलता नहीं है, ऊपर से मेरा कंप्यूटर और हैंग होने लगा।
3: कोई वो प्रॉब्लम नहीं है उसमें। सिक्योरिटी की वजह से आपका सनसाइन जानना चाहूंगा, फिर यहाँ से हम ठीक करते हैं इसको।
2: सिक्योरिटी के लिए सनसाइन क्यों?
3: क्योंकि फॉर्म पे आपने सारी चीजें लिखी हुई है ना, इसलिए हम वही मतलब कंफर्म।
2: मेरा सनसाइन कैंसर है। प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मतलब एक दो दिन बिल्कुल ठीक चला,
3: वो ठीक हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई सिक्योरिटी के कारण आपका ब्लड ग्रुप जान सकते हो मैडम?
2: ब्लड ग्रुप इसे सिक्योरिटी इंटरनेट का कनेक्शन है
3: मैडम। ये इंटरनेट का कनेक्शन है, आप मेरे को क्यों बता रहे हो? ब्लड ग्रुप बताइए।
2: बी पॉजिटिव, दो दिन चल के दिखा दिए कि हाँ इंटरनेट है, बाकी तो चला ही नहीं।
3: सिक्योरिटी के कारण आपके फादर नेम जान सकता हूँ?
2: राहुल शर्मा। और ये ठीक कैसे होगा, मुझे बता दो।
3: वही तो मैं आपको, अरे मैडम
2: आप सबसे डिटेल मांगे जा रहे हो ठीक करने के लिए, डिटेल होना चाहिए।
3: आप अपनी पूरी डिटेल नहीं देंगे तो कैसे हमें? सिक्योरिटी के कारण ये और जानना चाहता हूँ, आपको कोई अफेयर चल रहा है कहीं?
2: यार
3: नहीं तो मैं, अरे मैडम आप, मैडम सिक्योरिटी के कारण ये जानना चाहता हूँ कि आप अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा भी अफेयर नहीं चल रहा है। आप अगर, मेरा मतलब है अगर इंटरेस्टेड हो तो मेरा
4: पहली बात तो ये कि आप झूठ बोलती हैं कि आपका अफेयर नहीं चल रहा, क्योंकि आपके बॉयफ्रेंड ने मुझे आपका नंबर दिया है। दूसरी बात ये कि अब आपका अफेयर चलेगा, आपका मुर्गा बन गया। रेडियो मिर्ची पे आप दिल्ली सुन रही है, आपको सिक्योरिटी के कारण जानना चाहता हूँ, कभी मुर्गा बने इससे पहले आप?
2: नहीं,
3: दोबारा कॉल करेंगे। आप क्या वक्त लिया, आप बड़े अच्छे हैं, मैं अभी आपको कॉल बैक।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

शुक्र करो शुक्रवार आ चुका है दोस्तों। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बदलता मौसम, बदलते वीकेंड के प्लान्स और बदलते मार्केट कंडीशंस, ऐसे में फर्स्ट टाइम होम बायर्स, सेकंड टाइम होम बायर्स को क्या करना चाहिए ऐसे बदलते हालातों में, क्योंकि यार मॉर्गेज रेट्स भी तो बदल रहे हैं। तो वही सारी डिटेल्स हमें देने आए हैं मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लाइन मॉर्गेज। ओवर टू यू बी।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और ऐसे कैसे हो सकता है कि वीकेंड का प्लान बने, स्क्रीन टाइम का प्लान बने, और वो भी बिना स्नैक के? नो नो नो नो। और इसीलिए दीप चिप्स लाए हैं आपका मूड सेट करने के लिए। अलग अलग फ्लेवर्स के, अलग अलग टाइप के चिप्स, चाहे फिर वो ब्लैक पेपर वाला थोड़ा बोल्ड, रेड चिली वाला थोड़ा फिल्मी, या नेचुरल एकदम सीधा साधा क्रंच। तो यार, एक बोरिंग से स्क्रीन टाइम को बनाओ फुल ऑन धमाकेदार। लाइट्स ऑफ, नेटफ्लिक्स ऑन, और दीप चिप्स का पैकेट क्रंच। ये सिर्फ स्नैक नहीं है, ये यार वीकेंड वाइब्स का रिमोट कंट्रोल है। तो अगर आपने ट्राई किया तो बताना कैसा लगा, और नहीं किया है तो आज ही ट्राई करना दीप चिप्स फ्लेवर का एटीट्यूड, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। और तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: शाम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
2: बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है सेन्योरिटा गाने से, फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से। यार जब हम स्क्रीन पे ऋतिक, फरहान और अभय देओल को स्पेन में मस्ती करते हुए गाना गाते हुए देखते हैं तो फुल ऑन ट्रैवल वाइब्स तो मिलते हैं, पर पर्दे के पीछे ये गाना एक प्लान्ड एक्सपीरियंस था। जी हाँ, एक्टर्स ने स्पेनिश डांस और रिदम पे काफ़ी प्रैक्टिस की थी और सिंगिंग पोर्शंस के लिए भी रिहर्सल्स हुए थे। रियल लोकेशंस पर शूट करना मतलब टाइमिंग, लाइट और पब्लिक कोऑर्डिनेशन का बहुत ही ज़्यादा प्रेशर होता है। तो सोचिए दोस्तों, जो हमें बहुत ही स्पॉन्टेनियस रोड ट्रिप लग रही थी ना, वो एक्चुअली बहुत ही डिटेल्ड प्लानिंग का रिजल्ट था। तो क्या आप समझ गए कि बॉलीवुड में यार फन भी ना पूरे स्केड्यूल पे होता है, ये फन अनस्केड्यूल्ड वाला पार्ट सिर्फ हम रियल लाइफ लोगों के साथ होता है। तो चलिए ऐसे ही पर्दे के पीछे किसके किससे जानने के लिए मुझे जरूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, DM मी योर फेवरेट सॉन्ग और उसके पर्दे के पीछे की बातें, मैं बताऊंगी सिर्फ आपको। तब तक के लिए सुनते हैं सेन्योरिटा फ्रॉम जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों ओटीटी लवर्स के लिए भी मसाला रेडी है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, मसाला माने प्राइम वीडियो इंडिया का लुक के एक ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज हो चुका है, जिसमें नजर आ रहे हैं किंग, राशि खन्ना, लक्ष्मीवीर सिंह सारण और पलक तिवारी। और वैसे तो यार ट्रेलर देख के ना बहुत ही वाइब यूथफुल, केओटिक और थोड़ा सा कि ये गैंग वो गैंग है जो थोड़ी बहुत गड़बड़ करने वाली है, यही फील आ रहा था। और मुझे तो लगता है कि ऐसे शोज का चार्म तब होता है जब कैरेक्टर्स थोड़े फ्लॉड होते हैं, थोड़े फनी होते हैं और थोड़े ज़्यादा रिलेटेबल होते हैं। सो इट इज़ परफेक्ट फॉर दोज पीपल जो वीकेंड पे बोलते हैं कि यार कुछ लाइट लगाओ, दिमाग को ज़्यादा तान नहीं चाहिए। तो आप ही बताओ दोस्तों, क्या आप OTT पे कॉमेडी केओस देखते हो या फिर सीरियस थ्रिलर्स? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम जो मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

हमारी तो पारी हो रही है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, वीकेंड आ चुका है और सबके पार्टी के प्लान तो बन ही चुके होंगे, लेकिन वीकेंड में भी अलग अलग टाइप के पार्टी करने वाले होते हैं। एक होता है वो जिन्हें बाहर जाकर खाना होता है, और एक होते हैं वो जिन्हें घर पर ही खाना होता है, और फिर आते हैं मेरे जैसे तीसरे टाइप के लोग जिन्हें घर पर लजीज खाना तो बनाना होता है, जैसे शाही पनीर, पनीर टिक्का वगैरह वगैरह, लेकिन उसके साथ तंदूर में ज़्यादा वक्त नहीं जाया करना होता। तो ऐसे मसले का ना एक ही हल है, और वो है दीप नान। क्योंकि दीप नान में मिलेंगे वही ट्रेडिशनल टेस्ट एंड फ्लेवर, वही क्रिस्प, वही फ्रेशनेस जो ऑथेंटिक तंदूर के नान सा हो, और ये बने भी जल्दी तो आपकी पार्टी में देरी भी नहीं होगी। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए आपकी शाही डिश का साथी दीप तंदूर नान फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। और आपके शाम का साथी तो है ना मेरा ये अगला गाना ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हैरत से नहीं, एनर्जी से भर गया था ये ट्रैक, क्योंकि यार ये गाना फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी सुन के यार मूड ना एकदम ऑटो फ्रेश हो जाता था। लकी अली की वॉइस विशाल शेखर के बीट मैजिक क्रिएट कर देता था। और जी हाँ, हैरत वो गाना था जो रणबीर के जो बाइक राइड या कार राइड के सीन्स थे उन सबको भुलाकर अपने इनर ट्रैवलर को जगाने के लिए बनाया गया था। मतलब अगर वेगस में ड्राइव कर रहे हो तो मन में हैरत गाना तो बजता ही था। तो चलिए आज इस गाने का टेम्पो फील करते हैं। गाड़ी फुल स्पीड में मत चलाना क्योंकि हम अभी भी न्यू जर्सी में हैं, लेकिन गाने का तो फील कर सकते हैं बॉस। तो चलिए सुनते हैं हैरत फ्रॉम द एल्बम अनजाना अनजानी राइट हियर ऑन मिर्ची। वैसे आप भी बता सकते हो विच इज़ योर फेवरेट एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए हैरत राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हां, बातें हो रही है एक ऐसे एल्बम की जिसका हर एक गाना यार हिट पे हिट था। और इस एल्बम का जो टाइटल ट्रैक था उसने यार सिर्फ मूवी में ही नहीं बल्कि पूरे जनरेशन का मूड बना दिया था। जी हाँ, बात हो रही है अनजाना अनजानी की। और अनजाना अनजानी की जो कहानी है, जो विशाल ददलानी और शिल्पा राव के डुएट में गाया गया था, जिसके लिरिक्स में ही ना वो एक वंडरलस्ट फील था कि कौन जाने कौन हूँ मैं, मतलब इंस्टेंट कनेक्ट था। और सबके लाइफ में जो ये अपनी जो भी अपनी राह ढूंढ रहे होते हैं ना, उनके लिए एकदम हिटिंग सॉन्ग था ये। वैसे गाना सुन के तो लगता था जैसे जिंदगी ना एक ट्रिप ही है, मतलब डेस्टिनेशन नहीं। तो अगर आपको भी ऐसा ही गाना जर्नी वाला पसंद है तो मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम योर फेवरेट एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल बजाते हैं ये अनजान अनजानी का सुपर डुपर हिट गाना राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

पाता है, ना रात को सोया जाता है, उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना। प्यार

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, 2010 में आई थी ये एल्बम अनजाना अनजानी, कंपोज्ड बाय विशाल शेखर। और इसका एक ऐसा गाना आया था जिसमें यार मतलब दिल तोड़ दिया या फिर यादें छोड़ गई हो ना, बस वो गाना सुन लो हर फीलिंग डबल हो जाती थी। मोहित चौहान की आवाज़ में और शेखर रवजियानी ने भी जो इमोशन दिया था इस ट्रैक में, ओहो, किसी थेरेपी से ना कम नहीं था। क्योंकि इस गाने में सूफी टच भी था, मॉडर्न मेलेडी भी थी, जैसे कि दर्द और सुकून बिल्कुल एक साथ मिल गए हो। तो दोस्तों, इतना प्यारा गाना इस एल्बम का। वैसे तो यार इस एल्बम के हर एक गाने अमेजिंग थे, तो आपको कौन सा गाना इस एल्बम का सबसे ज़्यादा पसंद है, टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल ये जो ब्रेकअप रिकवरी वाला गाना है ना, सुन लेते हैं यार विशाल शेखर की कंपोजिशन राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Fefermirci.
1: Escabana, escabana, sacabana.
2: Rabana.
1: Burga, burga. La virtua la burga.
2: Mirci, burga.
3: Hello? Hello?
4: Sir, very good evening. My bank support.
3: हाँ बोलिए
4: सर. I'm so sorry सर, but सर आपने क्रेडिट कार्ड बनवाया था हमारे बैंक का?
3: बनवाया था भैया, क्या हो गया? नहीं क्या
4: बात है सर, आप तो सॉरी पूरा बता रहे
3: क्या करो भैया, कहाँ क्या हो गया?
4: सर आपने उसमें से अभी तक कुछ यूज किया उस क्रेडिट कार्ड को? कहीं पे यूज किया आपने? कुछ परचेजिंग करी उससे?
3: सर बात कर रहे हो या किसी के साथ हंस रहे हो? क्या कर रहे हो?
4: आई एम सो सॉरी सर, ऐसे कभी कभी हो जाता है सर. सर उससे कुछ परचेज किया आपने?
3: नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया. हेलो.
4: आई एम सो सॉरी सर. सर मैं आपसे कहना चाह रहा था, सिर्फ आपको इन्फॉर्म करना चाह रहा था. सर बस फाइनली ये बता दीजिए, कुछ परचेज किया आपने उससे? कुछ खरीदा था?
3: नहीं मैंने कुछ नहीं खरीदा. भैया पागल है क्या?
4: आई एम सो सॉरी सर, आपको मालूम है आपने कुछ भी नहीं लिया, फिर भी आपको 10,500 रुपए देने पड़ेंगे.
3: पागल पागल है क्या?
4: अब तो देने पड़ेंगे सर.
3: हेलो.
4: अब तो देने, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे, अब तो फंस गए, देने पड़ेंगे.
3: कौन बोल रहा है? विपिन.
4: नहीं सर, अब तो बैंक में आना पड़ेगा, बैंक का खाना खाना पड़ेगा, बैंक के पैसे देने पड़ेंगे.
3: पागल है क्या? दिमाग खराब है क्या तेरा? ऐसे देने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे पैसे?
4: अब तो फंस गए सर.
3: हेलो
5: सर, आप फोन मत काटिएगा प्लीज. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मैंने एक मजाक किया छोटा सा, मैं बैंक से नहीं बोल रहा हूँ. सर आप रेडियो मिर्ची पे हैं और आपके साथ मजाक किया था, आपका मुर्गा बन गया.
3: उसके पैसों को क्या हुआ भाई, देने पड़ेंगे?
5: नहीं सर, वो पैसे नहीं देने पड़ेंगे. आप अब भी नहीं समझे, मैं रेडियो मिर्ची से बोल रहा हूँ.
3: मतलब ये पक्की बात है, आप रेडियो मिर्ची से बोल रहे हैं?
5: हाँ जी. अरे सर रेडियो मिर्ची से ही बोल रहा हूँ सर, मैं तो उल्टा हो गया मेरा हिसाब.
2: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज एक ऐसे एल्बम के बारे में बात हो रही है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। जी हाँ, अनजाना अनजानी 2010 में रिलीज हुआ वो एल्बम। और आज की जो रिक्वेस्ट आई है, सॉन्ग रिक्वेस्ट, दैट इज फॉर द सॉन्ग तुमसे ही तुमसे। और ये जो रिक्वेस्ट आई है, दैट इज़ फ्रॉम रिया, जो कि रहती है एडिसन में। और रिया जी कहती है कि यार ये गाना जो तुमसे ही तुमसे गाना है, प्लीज़ सिद्धि जी बजा देना, क्योंकि ये मूड रोमांटिक है और वेदर भी रोमांटिक है, तो ऐसे माहौल में ये गाना तो बजना चाहिए। तो जी हाँ रिया जी, एब्सोल्युटली करेक्ट। दोस्तों वैसे क्या आपको 2010 का वक्त याद है, जब अनजाना अनजानी एल्बम ने सबको होपलेस रोमांटिक ही बना दिया था? मतलब विशाल शेखर का मैजिक चला था और इतनी खूबसूरत सी आवाज है हर गाने में, विशाल की कहिए, शिल्पा राव की कहिए, रणबीर प्रियंका की केमिस्ट्री, ओ हो, मतलब तुमसे ही तुमसे एक बहुत ही सुंदर सा गाना है, जहाँ हर नोट लगता है जैसे दिल से निकला हो। जैसे लॉन्ग ड्राइव पे सनसेट के टाइम ये गाना बज जाए ना, तो बस दुनिया रुक जाए। और मुझे तो लगता है कि हर किसी के लाइफ में एक तुमसे ही तुमसे मोमेंट ज़रूर होता है, जहाँ सब कुछ एकदम ब्लर सा हो जाता है और बस वो एक इंसान दिखता है जो दिल में है। तो बताइए आपका तुमसे ही तुमसे मोमेंट कब आया था? टेल मी ऑन इंस्टाडार जे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, या फिर इसी एल्बम का आपका फेवरेट गाना भी आप बता सकते हो। फिलहाल हम बजा रहे हैं तुमसे ही तुमसे, रिया जी के रिक्वेस्ट पर, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2010 के एल्बम की, अनजाना अनजानी के एल्बम की, जिसको कंपोज किया है विशाल और शेखर ने। और फिलहाल जो रिक्वेस्ट आई है दैट इज फ्रॉम राज, जो कि रहते हैं पिस्कैटवे में। और यार वो कहते हैं कि यार माहौल इतना अमेजिंग सा है, मौसम खूबसूरत सा है, तो थोड़ा अपबीट गाना चाहिए। जी हाँ, तो इसी के लिए आई फील गुड जरूर बजाइए। तो बस नाम ही काफ़ी है यार, मतलब आई फील गुड एक ऐसा गाना जो बजते ही लगता है कि दुनिया में ना स्ट्रेस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। और रणबीर और प्रियंका की केयर फ्री केमिस्ट्री इन दिस मूवी अनजाना अनजानी, न्यूयॉर्क इन नियॉन लाइट और विशाल ददलानी की वो रॉक स्टार एनर्जी, इस सॉन्ग को हर बीट में ऐसा लगता है कि बस लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स को भूल जाओ और चिल कर लो यार। तो चलिए आज बजाते हैं आई फील गुड फ्रॉम द वंडरफुल एल्बम ऑफ अनजाना अनजानी, जिसका हर एक गाना ज़बरदस्त है। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो वो ऐसा कौन सा एल्बम है जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राज के रिक्वेस्ट पर बजाते हैं आई फील गुड राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक दोस्तों। चलिए 8 बजने वाले हैं, इसका मतलब मेरा वीकेंड शुरू होने वाला है और इट्स टाइम फॉर मी टू से गुड बाय, टाटा, सायोनारा टू यू गाइस। लेकिन आप कहीं ना जाइए क्योंकि आपकी पार्टी यहीं पर शुरू हो सकती है। जी हाँ, क्लब मिर्ची शो आ रहा है, तो बस डीजे की जरूरत ही नहीं है, गाने यहीं पर बजाइए और अपनी पार्टी शुरू कीजिए राइट हियर ऑन मिर्ची। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, दिस इज मिर्ची सिद्धि साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: लेडीज एंड जेंटलमैन फैस्टन योर सीट बेल्ट्स एंड वेट फॉर द नो स्मोकिंग साइन वी आर गोना गो वी आर गोना गो वी आर गोना गो ऑन अ राइड
2: क्लब मिर्ची विद ओयंतिका एंड डीजे रिचर्ड

0: DJ Bridget.
1: भाई इतनी गर्मी है, टेम्परेचर ऑलरेडी हाई चल रहा है, ऊपर से एंट्री मार रही है क्लब मिर्ची. हेलो एंड वेलकम टू द कूलेस्ट पार्टी डेस्टिनेशन, दैट्स मिर्ची. एंड दिस इज डीजे रिचर्ड एंड मिर्ची ओयंतिका सेटिंग द हॉटनेस लेवल टू अ डिफरेंट हाई. एसी काम करना बंद कर दे लेकिन क्लब मिर्ची काम करना कभी बंद नहीं करेगी. पार्टी मूड चालू करते हैं फुल पावर पे. वेलकम टू क्लब मिर्ची एंड ऑफिशियली समर से भी ये है ज्यादा हॉट. लेट्स गो.
0: डीजे रिचर्ड, यू आर नॉट रेडी फॉर दिस.
2: नॉट रेडी.